पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूं?

जाना कभी ऐसा न।

Well, it's a brand new Sunday morning. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपकी सिंपली आफ्टरनून राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड ऑफिशियली हमारा वीकेंड हो गया है खत्म। अलार्म्स आर बैक इन बिजनेस, रोड्स आर गेटिंग बिजी डे बाय डे। जब तक स्कूल शुरू होती है लग तो रहा है कि कतर के लोग सब वापस आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बिजी होते जा रहे हैं। एंड वेल वी आर ऑल्सो सेट फॉर अ न्यू वीक। वैसे बात करते हैं कल के दिन के बारे में। इंडियन कम्युनिटी के लिए डेफिनेटली कल का दिन स्पेशल था। 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, और यहां कतर में आईसीसी में इंडियन कमिटी के साथ तिरंगा सेलिब्रेशंस और वो फेस्टिव वाइब देखने को मिली अलोंग विद द एम्बेसी ऑफिशियल्स। होप ऑल ऑफ यू सेलिब्रेटेड, हैड अ लवली टाइम। अगर आप कल वहां मौजूद थे तो जरूर 5001896 पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं भी वहां पर थी। वेल अब कैलेंडर ने पेज पलट दिया है, 16th ऑफ अगस्त का दिन है, नया दिन है, नया हफ्ता है, बैक टू रेगुलर प्रोग्रामिंग। सो वेल कॉफी हाथ में और हाथ में स्टीयरिंग के साथ में वीक को स्टीयर करते हुए, और मैं यहाँ पर माइक के साथ आपके दिन की जबरदस्त शुरुआत करते हुए राइट हियर माइक से दिल तक आप श्रीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's Hunt.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूं मतलब नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
1: फोन मत करो
2: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: check. Hey yo, this one is for all the little rock stars.
1: Vacation over हुआ है, अब जाना होगा school. Late morning उठने का बंद होगा rule. Bags on your shoulders, energy रखना full. क्योंकि मिर्ची लेके

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah.

0: विशाल मिश्रा की ये खूबसूरत सी आवाज में ये गाना ऑन दिस ब्यूटीफुल न्यू डे एंड अ न्यू वीक आपके साथ जुड़ गई है आपकी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड वेल माय फ्रेंड्स जहां मैंने यहां गुड मॉर्निंग कह दिया वहां आप लोगों के मैसेजेस आना धड़ाधड़ से शुरू हो गए हैं वेल गुड मॉर्निंग आफ्टरनून हैव अ ग्रेट वीक अहेड ये कौन कह रहा है ये कह रहे हैं आलीशान उसके अलावा गुड मॉर्निंग मैम मैम मत कहो यार आफ्टरनून कहो अच्छा लगता है सैफ देन गुड मॉर्निंग मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद फ्लावर्स होप एंड ऑप्टिमिज्म भर भर के है फ्लावर्स मेरे पास नहीं है फिलहाल लेकिन why not this is called optimistic कि भाई होप और ऑप्टिमिस्टिक दो ही सारी चीजें एक ही लाइन में आ गई है आपकी सो संधु हरपाल सिंधु भी यही कहते हैं गुड मॉर्निंग मोहम्मद राजू भी कहते हैं विद दिस 5000 1896 इज माय नंबर और एक आ रहा है अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग मोहम्मद खालिद है शायद इनका नाम सो यस 5000 1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर अगर आपको भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहना है तो बिफोर वी मूव अहेड जरा नजर डालते हैं आज के वेदर की तरफ
1: नाम तो जानते हो मेरा तापमान सलमान
2: वेदर अपडेट
0: देखिए वेदर तो आज का ये कह रहा है 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है मिनिमम 33 है फिलहाल जो महसूस कर रहे हो आप 38 है लेकिन मजे की बात आज ये लग रही है कि आज ह्यूमिडिटी थोड़ी कम रहेगी वाओ है ना देखो होप और ऑप्टिमिस्टिक की जो मैंने बात की थी आई थिंक सो समवेयर इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग तो ऐसे ही कुछ करते हैं ना आज का दिन उम्मीद भरा और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में ऐसे हम सोच ही लेते हैं और जैसे सोचते हैं ना वैसा हो जाता है अक्सर ट्राई करके तो देखो फिलहाल अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज यस श्रद्धा कपूर द एक्ट्रेस
3: नाजिया
0: और मिर्ची इट्स हॉट

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे, तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट इजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है, इट इज वेरी इजी टू ट्रोल बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गाना, आई थिंक सो दिस इज माय फेवरेट ट्रैक। धुरंधर के जो भी धुरंधर वन और धुरंधर टू के जितने भी गाने आए हैं, शाश्वत, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब फर्स्टली कि आपने न्यू म्यूजिक भी दी है अनलाइक अदर म्यूजिक। मतलब इतनी मूवीज आजकल जो आ रही है उसमें पुराने ही गाने लेकर उसी को ही कुछ एक्स्ट्रा बीट, समथिंग एक्स्ट्रा लिरिक्स ऐड करके पेश किया गया है। ओके, सो यू हैव ऑल्सो डन द सेम फॉर अ फ्यू ऑफ द ट्रैक्स, बट यू हैव ऑल्सो प्रेजेंटेड सम न्यू ट्रैक्स लाइक दिस आखिरी इश्क, जुबिन नौटियाल की आवाज में। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स एंड 16th ऑफ अगस्त संडे का दिन है। इट्स अ न्यू वीक, इट्स अ न्यू डे एंड एग्जैक्टली हम ये आधा हमारा एग्जैक्टली अगस्त का महीना गुजर चुका है, अगला आधा हमने शुरू कर दिया है। एंड मेरे ख्याल से ये वीकेंड की अगर हम बात करें तो पिछला वीकेंड जो था वो सभी का अपने अपने कंट्री के, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट हाँ मोस्टली अपने अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में गुजरा होगा, जहां पर 14th ऑफ अगस्त यानी फ्राइडे को हमारे पाकिस्तानी लिसनर्स अपना इंडिपेंडेंस डे जश्न आजादी मना रहे थे। वहीं पर 15th ऑफ अगस्त हमारे इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर विच इज इन लाइक ह्यूज नंबर्स, और ICC में मैं भी थी वहां पर, आई हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ होस्टिंग दैट इवेंट एंड आई सॉ सच अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल देयर। मतलब गर्मी है आई अंडरस्टैंड, और खूबसूरत सी बात ये थी कि बच्चे लेकर सुबह के 6:30 बजे आप वहाँ पर मौजूद हो, रियली शोज के हाउ मच यू आर मिसिंग इंडिया एंड हाउ मच यू लव इंडिया। बट आई थिंक सो वहाँ पर जो पूरा माहौल था ICC में, इट रियली डिन फील कि आप कहीं पर भी इंडिया को मिस कर रहे हो, लगा क्या आपको? और अगर ये सारी बातें आप सुनकर ऐसा लग रहा है कि यार सही में ऐसा होता है और कभी आप गए ही नहीं हो यहाँ पर फॉर फ्लैग हॉइस्टिंग और समथिंग, देन यू शुड डेफिनेटली गो अभी, नहीं तो नेक्स्ट अभी जो आएगा ना 26th ऑफ जैन रिपब्लिक डे, तभी तो आपको जरूर लेकर जाना चाहिए, बच्चों को लेकर जाना चाहिए, है ना। चलिए विद दिस अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा 90s का नॉस्टैल्जिया हो जाए। वो चली देखो बॉम्बे वाइकिंग्स की आवाज, यानी उसे रोके ना कोई, वो चली नीरज श्रीधर की आवाज में। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, और मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, यहीं पर हूँ।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ।
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
2: Mirchi Mornings पर आफरीन है आपके साथ राइट हियर और मिर्ची खड़ी का इशारा हो रहा है एग्जैक्टली सुबह के 7 बजे की तरफ आप सुन रहे हो मुझे आफरीन को और अगला गाना वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स दैट इज संजू राठौड़ की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

कैलाश खेर की आवाज में अ क्लासिक सॉन्ग हम कह सकते हैं इसे, जो हमारे जहन में इसका गाना ही नहीं, इनफैक्ट लिरिक्स ही नहीं, इसका म्यूजिक वीडियो भी मेरे ख्याल से बैठ गया। याद आ रहा है आपको कुछ? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तब मैंने महसूस किया कि हाँ, आज रास्ते पर शायद गाड़ियाँ पहले से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो सिलसिला है ना, अब से मेरे ख्याल से शुरू ही हो गया है, लोगों का वापस लौटना कतर शुरू हो गया है। एंड इफ़ यू हैव ऑल्सो ट्रैवल बैक टू कतर रिसेंटली, लाइक दिस वीकेंड स्पेशली, और आज से आपने ऑफिस रिज्यूम किया है, सो जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज ना 5000196, ये बताते हुए कि आप कहाँ गए थे आपकी छुट्टियों में, आपका वेकेशन कैसा गुजरा। और जनरली एक ऐसा होता है कि लौटते ही, मतलब ऐसे तो हम हमारे होम टाउन को मिस करते ही रहते हैं, लेकिन लौटते ही हम कुछ तो एक चीज़ है उस बहुत मिस करते हैं। वो क्या है? मतलब हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, आपके लिए वो चीज़ क्या है? जैसे मुझे लगता है कि फर्स्टली ऑफकोर्स वी मिस द फैमिली बॉन्ड। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो NRIs होते हैं और वो जब हमारे अपने होम टाउन जैसे जब जाते हैं तब पूरी फैमिली को एक साथ मिलते हैं, लाइक वहाँ पर रहने वाले, आई एटलीस्ट ऑब्जर्व दैट कि जितने लोग इंडिया में रहते हैं ना वो इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते जितना हमारे वहाँ पहुँचने पर सबका मिलना जुलना, गेट टुगेदर्स, एक फैमिली रीयूनियन सा होता है। डू यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस या फिर सिर्फ मैं ही महसूस करती हूँ? प्लीज़ टेल मी 5000196। हालाँकि दिस ईयर आई कुडंट विजिट इंडिया, सो आई रियली वॉन्ट टू नो योर स्टोरीज कि आपका कैसा गुजरा वेकेशन दिस ईयर। मीनू अरिजीत सिंह की आवाज में वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स। देखिए बहुत सारे रीमिक्सेस, रिक्रिएशन ये सारे बनते हैं एंड आई एम नॉट इन फेवर, बट समवेयर आई लाइक दिस सॉन्ग। सदमा मूवी का जो गाना है उसका रिक्रिएशन है ये, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। एंड अरिजीत सिंह, यू हैव डन टोटल जस्टिस आई फील टू दिस। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
5: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही है? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
3: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
5: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है या लाइन में आ रहा हूँ? तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
3: है?
5: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
3: हेलो
5: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
3: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC supply.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live.

0: गाड़ियाँ तो हम आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन मेड इन कतर गाड़ी कभी देखी है? ये सिर्फ बातें नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत बनने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज की सबसे बड़ी खबर में ये खबर है,
1: क्या खबर कतर?
0: That Qatar is officially gearing up for its first dedicated electric vehicle manufacturing plant. Yes, you've heard it right. ये बहुत ही बड़ी खबर है, for the first time in the country हो रहा है that Qatar, through a partnership between Qatar-based GTA International Investment and UK-based What Electric Vehicle Company. अब What का नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, मैंने भी honestly पहली बार ही सुना है। I'm not into cars much, but interestingly this British company specializes in designing and engineering low volume electric passenger and commercial vehicles using its own lightweight EV technology called the PACES platform, and that technology recently won the innovation award at the Auto Car Awards 2026. aur Qatar ke liye jo EVs banegi wo specially gulf ki extreme heat aur driving conditions ko dhyan mein rakhkar engineer ki jayegi. Design aur engineering UK mein hoti hai hogi, but manufacturing hogi right here in Doha under the Made in Qatar brand. This is absolutely huge. Well, reports also suggest production could begin in early 2028. मतलब ये कोई बहुत फ्यूचर की बात भी नहीं है, this is absolutely near future. Well, initially ये पैसेंजर कार बनाएंगी और उसके बाद में डिलीवरी वैन की तरफ भी ये जाएंगे. So कल तक Made in Qatar बोलते वक्त जो प्रोडक्ट्स दिमाग में आते थे उस लिस्ट में वेरी सून इलेक्ट्रिक कार्स भी हो सकती है. आप सुन रहे हो आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टेल मी, वुड यू बी द पर्सन टू बाय दीज इलेक्ट्रिक कार? आई थिंक सो, आई वुड श्योरली गो फॉर देम. अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: खुल गए।
1: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
1: द मेंटलिस्ट सुहानीशा।

0: वेल हुजूर, आदत से मजबूर तो मैं भी हूँ इस वक्त पर। वेल मजबूर नहीं कह सकती, लेकिन आदत सी जो बन गई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आदत सी जो हो गई है ना कि इस वक्त पर हम आते हैं, गेम शेम खेलते हैं, दो बातें कर लेते हैं, तो मेरी जो तन्हाई है ना थोड़ी यहाँ पर स्टूडियो में, वो थोड़ी दूर भी हो जाती है इसी बहाने। वेल क्या है आज का सवाल? आज का सवाल शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हैविंग सेड दैट, आपके कान एकदम से खड़े हो गए रहेंगे, अरे वाह आज आफरीन कोई मजेदार सवाल लेकर आई है। लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है बॉस, सीन सुना रही हूँ आपको, और सीन सुनाने के बाद चलो ठीक है, आई विल थ्रो अराउंड सम हिंट्स फॉर यू, ठीक है? सो हियर इट गोज।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: लुक, आप मुझे नहीं समझते और मैं आपको नहीं समझता, करेक्ट? बट दैट्स फाइन, हम क्यों समझे एक दूसरे को, वैसे भी क्या कम चीजें हैं समझने के लिए।
0: बात तो सही है भाई, दिन की शुरुआत हुई है, काम की तरफ जा रहे हैं, समझने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, और उसमें आफरीन इस तरह से सवाल देती है कि समझो और बताओ कौन सी मूवी है ये। सो फिर से सुनाऊं क्या मैं? शायद थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आएगी, चलो सुन लीजिए।
2: आप मुझे नहीं समझते और मैं आपको नहीं समझता, करेक्ट? बट दैट्स फाइन, हम क्यों समझे एक दूसरे को, वैसे भी क्या कम चीजें हैं समझने के लिए।
0: यस, वैसे भी क्या कम चीजें हैं। आवाज तो मैंने, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि ये किसकी आवाज है। तो मैं आपको एक हिंट बहुत बड़ा वाला ये देती हूँ कि ये मूवी में इनके साथ में है रानी पद्मावत। समझ गए किसकी बात कर रही हूँ मैं? समझ गए ना? 5000186 इज माई नंबर, नाउ कम हियर एंड टेल मी कि ये हीरो की आवाज़ तो शायद आप समझ गए हो। वाओ, राइट? एंड इनके साथ में जो हीरोइन है वो रानी पद्मावत है। रानी पद्मावत कौन बनी थी? बताओ बताओ बताओ। 5000186 इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, वॉइस मैसेज भेजो या टाइप करके भेजो, लेकिन अपना नाम जरूर बताइएगा, ठीक है ना? प्यारी सी आवाज दी थी मोहन की आवाज में, और मिर्ची माइक से तिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The Mentalist Suhani Shah.

0: अरमान मलिक की आवाज में ये गाना दिल में हो तुम और फिलहाल मैं आपकी गाड़ी में रहूंगी या फिर आपके घर में हूँ क्योंकि मैं आपके रेडियो स्टेशन पर हूँ। कौन हूँ मैं? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और आज आफरीन ने तो ठान लिया कि भाई नया दिन है, नया हफ्ता है, बड़े फ्रेश आए हो ना वीकेंड मनाकर, तो थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन तो बनता है बॉस, बनता है कि नहीं? सो हियर इज लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का आज का सवाल।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: लुक, आप मुझे नहीं समझते और मैं आपको नहीं समझता, करेक्ट, बट दैट्स फाइन। हम क्यों समझे एक दूसरे को, वैसे भी क्या कम चीजें समझने के लिए।
0: Yes, वैसे भी चीजें कम तो नहीं है, ये तो आप और मैं हम दोनों एग्री करेंगे, लेकिन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीन आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स। जहां यहाँ पर कुमार का मैसेज आता है कि ये हम तुम मूवी का है, नो बॉस हम तुम नहीं है ये। किसी ने कहा मैं अनाड़ी तो खिलाड़ी, नहीं ये तो वो भी नहीं है, लेकिन ये है कौन सी मूवी। किसी ने कहा कॉकटेल क्या है ये, तो नहीं ये कॉकटेल भी नहीं है। 5000196 वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है अगर मैंने नहीं बताया है तो। मोहम्मद यूसुफ खान का यहाँ पर मैसेज आया है, देन चार्ली का मैसेज आया है, देन आई हैव देव मैसेजिंग मी राइट नाउ, और फिर मनीष प्रसाद का भी मैसेज है, और कौन है ये मोहसिन का मैसेज है, बहुत सारे लोगों का मैसेज है सेइंग दैट ये मूवी कौन सी पता है फ्री, वो मैं नहीं बताऊंगी, ये आप ही सुनो। ये है लव आजकल का ही, और इसके लिए इसके पीछे बजाने का ना भी एक रीजन है, मैं आज ये क्यों बजा रही हूँ। हाँ जी, द रॉयल थी सैफ अली खान, इनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। मिर्ची वॉन्ट्स टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैविंग सेड दैट, क्या आपको सैफ अली खान की सबसे फर्स्ट मूवी याद है? इट्स नॉट अ पॉपुलर मूवी, ठीक है, अगर आपको पता है तो सॉलिड बॉलीवुड बफ हो आप। 5000196 मेरा नंबर है, और सैफ अली खान के जनरली अगर हम गाने याद करें और मूवीज याद करें तो हमें कौन से आते हैं, हमें 2000 के एरा के आते हैं, दैट्स वेयर ही गॉट इज रियल पॉपुलैरिटी। 90s में तो उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा था, इतना कुछ खास नहीं चल रहे थे, बट ये गाना मैं 90s का प्ले करना चाहूंगी ऑफ सैफ अली खान मूवी।
3: तेरी चाहत के दीवाने हुए हम,
0: पहली मूवी याद है क्या बाय द वे, बताओ जरा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना, आई जस्ट लव दिस ट्रैक, एंजॉय इट ऑन मिर्ची। इट्स ऑट गो

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking.

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
1: Mirchi One. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8 बजे की तरफ और बर्थडे मना रहे हैं भाई हम पटौड़ी घराना के चिराग का यानी सैफ अली खान का सो प्लेइंग नेक्स्ट सुनिधि और नीरज की आवाज में रेस का टाइटल ट्रैक कर लेकिन 8 तो बज गए हैं तो आप भी अपनी घड़ी मिला लीजिए और मिर्ची इट्स हॉट
4: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

आपने सुना रेस का, लेकिन आई थिंक सो ये बंदा वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम. मतलब ये जेन जी पहले ही था, इवन बिफोर दिस वर्ड और टर्म जेन जी एग्जिस्टेड. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen, co-writer on Richie Mornings. And today is 16th of August and नवाब ऑफ बॉलीवुड यानी सैफ अली खान का आज बर्थडे है. और कुछ ऐसी चीजें सैफ अली खान के बारे में मैं बताना जरूर चाहूंगी. वैसे थोड़ी देर पहले मैंने ये पूछा था कि सैफ के पहली मूवी का नाम क्या है, which I think so most of us are not aware of. And honestly बताओ, मैंने भी अब आधा घंटा पहले ही जाना है जब मैंने गूगल किया था to ask you. So यश चोपड़ा की मूवी थी परंपरा, इसका नाम था. I have no clue कि ये मूवी में कौन था, क्या था. ये मूवी मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन यस द लेसन नोन

अबाउट नवाब साहब, लेकिन पता है क्या, उनकी मूवी वॉज नेवर सपोज टू बी परंपरा, इट वॉज सपोज टू बी बेखुदी बाई डायरेक्टर राहुल रावल. अब यहाँ पर क्या हो गया कि इट वॉज मेंट टू लॉन्च बोथ सैफ एंड काजोल, लेकिन यहाँ पर जब फर्स्ट शॉट दे रहे थे ना सैफ अली खान, वो उन्होंने गलत दे दिया. एंड ये राहुल रावल जो है, ही वॉज लाइक नोन टू लाइक दैट पर्सन जो होता है ना, नो नॉनसेंस फ्रॉम द एक्टर, के भाई गलत है तो बस निकाल दो. एंड दैट्स हाउ ही एक्चुअली रिमूव्ड हिम फ्रॉम हिज फर्स्ट मूवी ओनली. बट ठीक है, नवाब साहब है, इनका करियर थोड़ी ना ऐसा इधर रुकेगा. तो बस उसके बाद में मूवीज का सिलसिला शुरू हुआ. एंड टॉकिंग अबाउट इज 90s का करियर ना, सैफ वॉज नॉट अमंग दोज पॉपुलर एक्टर्स आई थिंक सो इन 90s. वो लंबे बाल, वो थोड़ी सी अजीब सी आवाज, एंड वो दुबले पतले से, समथिंग वॉज ऑफ अबाउट हिम अंटिल द मूवी दिल चाहता है केम. ऐसा नहीं लगता आपको कि सैफ के करियर का टर्निंग पॉइंट ही दिल चाहता था? एंड उसमें भी उसके बाद उन्होंने जितनी मूवीज करी है ना, सैफ लाइक ही हेल्ड ऑन टू दिस कैरेक्टर, एक जेंजी कैरेक्टर. मतलब उनका जो एक्चुअली जो रूप है, जो एक्चुअली उनका मेरे ख्याल से जो कैरेक्टर है, इट्स मोर ऑफ जेंजी. वो बंदा जो कॉलेज में कूल होता है ना, जो गिटार बजाता है, रियल लाइफ में ये बंदा भी गिटार बजाता है. एंड रियल लाइफ में ये बंदे को घोड़े चलाने का भी बड़ा शौक है और खाना बनाने का भी बड़ा शौक है. तो बस yes, बहुत सारी चीज़ें मैंने सैफ अली खान के बारे में बताई हैं. और अगर आप सैफ अली खान के फैन हो या फिर यू हैव रियली लाइक्ड हिज एवोल्यूशन, I would say over the period of years, कि भाई क्या एक्टिंग की है इन्होंने रेस में, ओमकारा में, एंड देन सो मेनी मोर मूवीज. तो लेट मी नो दैट वन मूवी यू लाइक अबाउट सैफ अली खान. 5000196 मेरा नंबर है. और अगला गाना जो मैं बजा रही हूँ, देखो भाई डांस भी बढ़िया ही करता था. अब ऋतिक रोशन से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मजा आता था ये बंदे को डांस करते हुए देखते, है ना. Enjoy this track and happy birthday, Seth!

0: Mix. It's hot.
1: Love is the message, eh?

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka. Milci.
1: Navid.
0: बोल रहा हूँ।
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप वो लुक के लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
0: हूं। ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
0: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। मैं रेडियो मिर्ची पे।
1: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
0: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू। थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
4: इट्स ऑल डाउन एंड डन, इजंट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah live.

लेकिन आपको कैसा लगा ये गाना बताओ, मतलब कैन यू एक्चुअली कंपेयर दर्शन रावल एंड कुमार सानू? नहीं ना, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक. 16 अगस्त की तारीख है और एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली हम महीने के बीचों बीच आकर खड़े हो गए हैं, जहां पर हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां हमारे सारे इंपॉर्टेंट जो खर्चे होते हैं, जो बेसिक सर्वाइवल खर्चे होते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं. एंड नाउ इज अ टाइम जहां पर आप अपने ख्वाहिशों पर, अपनी चीजों पर या अपनी सेविंग्स की तरफ सोचते हो. तो बस अगर सोच ही रहे हो सेविंग्स के बारे में, देन व्हाई नॉट एक्सचेंज रेट भी सुन लो लगे हाथ. देखिए एक्सचेंज रेट आज का कह रहा है, एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस, दैट इज 26.14. वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस आपको मिल रहे हैं 76.21. बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज 33.73. एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीस 91.48 एंड एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं नेपाली रुपीज 41.78. ये थी आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां. और बस इस ब्रेक के उस पार मैं आ रही हूँ एक और गेम लेकर, एक नया गेम लेकर, प्रोबेबली पब्लिक डिमांड वाला गेम लेकर कुछ ही देर में. यार बहुत सारे सस्पेंस रख रही हूँ आपके सामने, बट यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन मिर्ची इट्स हॉटर.

0: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप. गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट SCD Snoonu. बुक योर्स नाउ.
0: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव.

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

बड़ा क्यूट सा लगता है मुझे ये गाना जी। आज आफरीन जुड़ गई है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची एंड नाउ इट्स टाइम कि हम और आप मिलकर खेलें मेरा फेवरेट वाला गेम। वैसे तो मुझे गेम खेलना ही पसंद है, तो कोई भी गेम आप मेरे सामने लेकर आ जाओ, मुझे तो बड़ा मजा आता है। सो हियर इट इज मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। देखिए मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में मैं कुछ नया लेकर आई हूँ, ठीक है। और पिछली बार मैंने एक नया गेम लाया था जो आप लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया है कि आपने पब्लिक डिमांड पर खाया कि आफरीन उसी टाइप का कुछ पूछो, बड़ा मजा आता है। सो हियर इट गोज। मैं थ्री चेन फिल्म ये खेल रही हूँ यहाँ पर, थ्री चेन फिल्म जहाँ पर कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्शन कुछ बताऊंगी, ये मूवी का वो मूवी से, वो मूवी का ये मूवी से, आपने बस गेस करना है कि ये तीन मूवीज कौन सी है जिसके बारे में आफरीन बात कर रही है। सो रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो, वो कौन सी मूवी है जिसमें हीरो को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है और यही हीरो किसी और मूवी में एलियन है, लेकिन इस मूवी की हीरोइन किसी और मूवी में अपनी एंगेजमेंट रिंग खो बैठती है। अब बताओ बंधु कौन सी तीन मूवीज की बात कर रही है आफरीन। 5000196 इज माई नंबर, लेट मी टेल यू अगेन, वो कौन सी मूवी है जिसमें हीरो को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, ठीक है, और यही हीरो किसी और मूवी में एलियन है, लेकिन इस मूवी की हीरोइन किसी और मूवी में अपनी एंगेजमेंट रिंग खो बैठती है। मजा आया ना अभी, बताओ बताओ तीन मूवीज मैंने बताए हैं यहाँ पर। आई थिंक सो इट्स क्वाइट इजी है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अरिजीत सिंह की आवाज में एक लगाना। 5000196 व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज भेजो। तब तक के लिए गाना एंजॉय करो और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता हूँ. मतलब मेरा होता है.
3: तो वो तो पता है. मेरा बस चढ़ता है एक एक को घुसण मार के आती हूँ.
2: माय फ्रेंड. हाउ आर यू माय फ्रेंड?
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
4: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC supply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

0: अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज में ये गाना हैज टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स, ऑफ कोर्स कंपोज्ड बाय एआर रहमान। एंड इस मूवी के ताल मूवी के सारे गाने कितने खूबसूरत रहे ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, जो नॉट सो सिंपल सवाल लेकर आई है आपके लिए। और क्या सवाल है, लेट्स ओपन द मिस्ट्री बॉक्स फर्स्ट। मिस्ट्री बॉक्स, देखिए आज ये बॉक्स में से ऐसे कनेक्शन, हमारे वो जो तीन चेन फिल्म्स निकले हैं, जहां पर आपको पता करना है कि यार ये तीन मूवीज कौन सी है एक दूसरे से कनेक्टेड जो है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, इसमें आप जवाब तो देते हो, अक्सर लोग दो जवाब एक जवाब सही देते हैं, और लेकिन तीन जवाब सही देने वाले कुछ कम ही लोग होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन चलिए आज के हिंट्स के बारे में बात करते हैं। वो कौन सी मूवी है जिसमें हीरो को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, और यही हीरो किसी और मूवी में एलियन है, लेकिन उस मूवी की हीरोइन किसी और मूवी में अपनी एंगेजमेंट रिंग खो बैठती है। गाचा। कौन सी मूवी है ये, चलिए सुनते हैं हमारे लिसनर से।
1: वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: साहिल हियर।
0: हां साहिल,
1: द फर्स्ट मूवी इज गजनी।
0: ऑलराइट,
1: द सेकंड मूवी इज बीके,
0: ओके,
1: एंड द थर्ड मूवी इज थ्री इडियट्स। थैंक यू।
0: थ्री इडियट्स में वो रिंग नहीं वॉच होती है। हाय
2: अफरीन, गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रिंसन हियर।
0: हां प्रिंसन,
2: द फर्स्ट मूवी इज गजनी,
0: ओके,
2: द सेकंड मूवी इज पीके,
0: ओके,
2: एंड द थर्ड मूवी इज व्हेन हैरी मेट सेजल।
0: दैट इज,
2: थैंक यू एंड हैव अ लवली डे।
0: बिल्कुल सही जवाब प्रिंसन, और प्रिंसन की तरह ही यहां पर और भी लोगों ने सही जवाब तीनों दिए हैं, जो है मोहम्मद यूसुफ खान एक है, देन आई हैव सेजल हियर, देन आई आल्सो हैव ताहिर, जिसने तीनों भी सही जवाब दिए हैं, एंड देन और कोई है नहीं। चांदी तुमने भी थ्री इडियट्स कहा है, काफी लोगों ने थ्री इडियट्स कहा है, लेकिन ये याद दिला दूं थ्री इडियट्स में करीना कपूर जो है वो वॉच घुमाती है, और मैंने कहा था कि पीके में जो हीरोइन है वो कुछ घुमा देती है। सो यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मजेदार है ना। शरारत भरा सवाल तो मेरा हो गया, अब शरारत भरा गाना भी हो जाए। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 89.6 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट देखो मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरा साथ तो आपके साथ जुड़ गया है लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा किस तरफ है जरा देखा जाए तो 9 बजकर 1 मिनट की तरफ है और अगर अभी चैनल बदला तो घाटा हो जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि गजेंद्र वर्मा की आवाज में वो गाना आ रहा है जो आपको बहुत पसंद आया करता था एंड बहुत टाइम से आपने सुना भी नहीं होगा, तो चलिए सुन लीजिए उसी बहाने एंड एंजॉय इट ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

असीस कौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और जो मुझे तुम भी छोड़कर जाओगे ना बहुत पछताओगे देखना। कौन बताएगा आपको कतर का हाल, कौन बताएगा आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर की बातें, कौन कौन बताएगा। तो इसीलिए भाई 89.6 FM पर मैं हूँ सिंपली आफरीन आपके साथ। सिंपल से खबर नहीं, बड़ी बड़ी खबरें लेकर आती हूँ और वो सारी चीजें बताती हूँ जो आपकी बोरियत बिल्कुल ही दूर कर दे। जैसे देखो अब ना OTT का ऐसा हालचाल हो गया है कि आपको वीकेंड तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है ना, थैंक्स टू वेब सीरीज जो होती है, जो एपिसोड्स में बटी होती है। उस वजह से क्या होता है ना कि आप को आपके दिन में, पूरे दिन में भी, लाइक वीकडेज में भी जब आप ऑफिस से आते हो तो आपके पास खुद के लिए जब वक्त होता है तो एक एक एपिसोड करके आप ये पूरे हफ्ते में सीरीज एक खत्म कर सकते हो। जैसे एक सीरीज जो बहुत चर्चे में है एंड दैट इज ऑपरेशन सफेद सागर। यस सो ये जो है, दिस इज एब्सोल्यूटली अ वेरी नाइस सीरीज जो आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे, इफ आई एम राइट। यस है ना, मैं चेक कर लूँ एक बार, ये नेटफ्लिक्स पर ही है ना। ऑपरेशन जो है इसमें सिद्धार्थ है, इसमें बहुत सारे उमदा एक्टर्स हैं, जिमी शेरगिल है, एंड इट इज़ अबाउट the untold story of the Kargil war, and this is not the ground story, this is the story jo unchai jo aasman mein jo ladai ladi gayi thi aur usme kaisa hua tha, kya hua tha, so it is about that, it's a historical war series jo aap dekh sakte ho. So meanwhile main hu Afreen aapke sath, ye maine kaha tha Netflix par hi stream ho rahi hai, maine verify bhi kar liya ye Netflix par stream ho rahi hai, maine ab tak ye dekha nahi hai lekin I have heard a lot of great reviews about this series Operation Safed Sagar. agar aapne already Then share me your opinion कि आपको कैसी लगी है। हरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना, तब तक के लिए अगला माइक से दिल तक आफरीन है आपकी, यार आपके साथ ऑन मिर्ची हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bol le ho na hamari nahi scheme ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गए ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
1: है।
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी,
1: I'm sorry, नवीन, I'm sorry.
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
1: कोकड़ो को।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ only on मिर्ची it's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: कभी आना तुम मेरी गली,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: देखो फिलहाल आप तो मेरे गली आ ही चुके हैं, इसीलिए तो ये गाना सुना है आपने। यूफोरिया यानी पलाश सेन की आवाज में ये गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, सावधान रहिए, स्पेशली वो लोगों के लिए बता रही हूँ मैं जिनके एम्प्लॉयज बाहर जाकर काम करते हैं। तो रिमाइंडर जो है ये एम्प्लॉयर्स के लिए है, ताकि उनके वर्कर्स स्ट्रिक्टली एडर करें ये कतर की एकदम खतरनाक वाली गर्मी को। क्योंकि अब लास्ट वीक, इफ आई एम राइट, यस लास्ट वीक ये एक कतर मेटलर्जी डिपार्टमेंट ने कहा था कि देर इज द साइटिंग ऑफ अ स्टार, दैट मीन्स दैट नेक्स्ट फ्यू डेज यानी प्रिसाइजली द नेक्स्ट टू वीक्स आर गोना गेट द पीक, इट लाइक दे गोना गेट इवन मोर हॉट। सो बस इसी चलते ये जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मेजर्स है इसे लेना बहुत जरूरी है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हीट स्ट्रेस। एंड अंडर द रेगुलेशन आउटडोर वर्क जो है इज परमिटेड बिफोर 10 AM एंड वाइल वर्क अंडर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है फ्रॉम 10 AM टू 3:30, और 3:30 के बाद में काम ये रिज्यूम हो सकता है। लेकिन कहीं आपको ऐसा कोई लगे, कहीं पर नजर आए कि कोई ऐसा काम कर रहा है, आउटडोर्स में काम कर रहा है बिल्कुल इस तपती धूप में, तो आप इसे रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं। वैसे ये जो बैन है, आउटडोर वर्क बैन, रिमेन्स इन इफेक्ट फ्रॉम 1st of June अनटिल 15th of September। तो बस इससे ये पता चलता है कि आज है देखो 16 अगस्त और फिर 15th of September, मतलब एक महीना है हमारे वेदर अच्छे वाले दिन को फिर से लौटने के लिए। एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर इट। या आई एम एब्सोल्युटली मिसिंग माई दोहा पोर्ट डेज, मतलब जब मैं ऑफिस से निकल के दोहा पोर्ट पर जाकर बैठती हूँ, लिटरली आई जस्ट डोंट डू एनीथिंग, 2 घंटा वहां पर बैठती हूँ, कॉफी लेकर बैठती हूँ या कुछ, एंड आई कैन जस्ट स्टेयर एट दोज वास्ट सी एंड द ब्यूटिफुल दोहा स्काईलाइन। ओके, मैं कहां से कहां चले गई, आई एम सीरियसली मिसिंग ऑन समथिंग द आउटडोर लाइफ ऑफ आर कतर।
3: इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा,
2: और हाँ जी ये गर्मी मिटा जाए,
3: इश्क मिटाए
2: जल्द से जल्द
3: निमाए मेरा।
2: तब तक के लिए मोहित चौहान की आवाज आपको ठंडक जरूर देगी और मिर्ची।

0: और क्यों पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिडू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: पंखा याग्निक और कुमार सानू की आवाज में जब 90s के गाने के साथ आपकी अगर दिन की शुरुआत हो रही है तो यकीन मानिए आप ना बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप अपने ऑफिस में या जहां पर भी जा रहे हो वहां एंटर कर जाओगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आप रेगुलरली ये शो सुनते हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर मुझे, तो आपको पता होगा कि ये वो वक्त है जब आफरीन ना अपने डायरी से कुछ खास अल्फाज लेकर आती है। और आज के अल्फाज के जो मायने हैं ना बहुत गहरे हैं।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, वक्त बदल जाता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदल जाती है रिश्तों के साथ, रिश्ते बदल जाते हैं अपनों के साथ, और अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। और ये बात कितनी गहरी जाकर आपको लगी होगी ना कि वक्त के साथ में आपके जो रिलेशनशिप्स है अपने में कोई भी आ सकता है, आपका वो दोस्त हो सकता है, आपके वो सिबलिंग्स हो सकते हैं, और इट कुड बी जस्ट एनीवन। क्या आपने देखा है कि वक्त के साथ में किस तरह से आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो कैसे बदल जाती है? अब वो अच्छे के लिए भी हो सकती हैं या इट कुड बी द अदर वे आल्सो। अब इसके मायने सभी के लिए अलग है ना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अरिजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना ऑन मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी.
3: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11.
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: शोर करता है.
3: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलोसफी से?
4: गांधीयन.
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने
4: निभाया?
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट. 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

अदिति सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी टू स्टेट्स। वेल दोस्तों, इट्स टाइम दैट आई रैप अप फॉर द डे, यानी आज के दिन के लिए बस टाटा बाय बाय अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लेकिन इसी के साथ एक रिमाइंडर देने का भी वक्त है, जहां पर आप अगर भूल गए ना इस वीकेंड पर ये काम करना, तो फिर याद दिला दो भाई। सोच रहे हो ना कितने दिन से कि यार सुहानी शाह आने वाली है, हमने रेडियो पर भी सुना है, हमने इंस्टाग्राम पर भी कितनी जगह देखा है, लेकिन आने वाली है, सोच रहे हैं, हाँ टिकट ले लेंगे, अब तो टाइम है ना। सो लेट मी टेल यू भाई, टाइम नहीं है ड्यूड्स। बिल्कुल, क्योंकि टाइम जो है आपका ऐसे भागते जाएगा ना क्योंकि टाइम में कि पता नहीं चलेगा। इसलिए SCTN एंड सोनू सिटी इज द प्लेस जहां पर आपने जाकर टिकट्स खरीदनी है। एंड यस, 25 सितंबर QNCC इज द प्लेस एंड 25 सितंबर इज द डेट। मार्क द डेट, सेव द डेट्स। एंड यस, एक ऐसा शो जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। यार गाने का शो देखा है, डांस शो देखा है, लेकिन मेंटलिस्ट का शो देखा है? सुहानी शाह इज द आंसर फॉर दैट। मीनवाइल टाटा बाय बाय, सायोनारा, मिलूंगी कल सेम टाइम सेम शो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। माइक से दिल तक आफरीन लेती है अलविदा एंड देती है आपको नेहा कक्कर, अंबिका सिंह और कुमार सानू का साथ विद दिस नेक्स्ट ट्रैक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
1: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Rabbala.
1: Murga, murga. Na vietvala murga.
2: Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही हैं?
3: आप कौन बोल रही हैं?
5: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
3: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
5: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
3: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
5: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
3: ये तो वहाँ से मेरे पास,
5: अरे यार
3: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
5: हो सकता है, हो सकता है।
4: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
5: हेलो।
3: हेलो,
5: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
3: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
5: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ। तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
3: है?
5: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
4: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू।
3: हेलो
5: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची फ्रेश माल,
6: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: भाई सब बात इतनी है ना कि इश्क क्यों करने लगा दिल, मतलब जब इश्क होता है ना तब ये ख्याल नहीं आता, जब इश्क हो जाता है उसके बाद जो है ये सवाल जरूर आता है।
2: मिर्ची अंशु
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक नई एनर्जी, नए जोश, जुनून के साथ एक बार फिर से आ चुकी हूँ। नए हफ्ते का आगाज हम करने जा रहे हैं, इसने दस्तक हमारी जिंदगी में दे दी है। एंड अभी का हर एक हफ्ता जो है ना बॉस काफ़ी खास, काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ग्रेजुअली अगर हम किसी मुहिम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बस वही जो हमें ये कहेगा बहुत जल्द कि भाई स्कूल जो है बच्चों के खुलने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली यार, महज 15 दिन की दूरी पे हैं हम, एंड उसके बाद एक बार फिर से वो सुबह सुबह की जद्दोजहद कि भाई आज टिफिन में बनाना है तो क्या बनाना है, जल्दी जाओ, बस आ गई, गाड़ी वाला बाहर वेट कर रहा है, अभी तक तुमने जूते नहीं पहने कितनी सारी बातें, अरे अरे अपना बैग तो लेते जाओ, फिर पानी की बोतल भूल गए, मतलब कितने क्वेश्चंस, कितनी बातें हैं ना। हर दिन ये सिलसिला जो है ना बस हर घर में किसी ना किसी तौर में कायम ही रहता है। लेकिन फाइनली जब बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, हस्बैंड जो ऑफिस के लिए निकल गए, उसके बाद जिस तरह की वो सुकून भरी सांस ली जाती है ना, आई एम प्रीटी श्योर जितनी भी लेडीज इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगी, या आप जो है अपनी वाइफ, मॉम या सिस्टर से 101% रिलेट कर पाएंगे। लेकिन यही तो वो पल है यार जो बचपन के दिनों को और खास एंड और स्पेशल बनाते हैं। चलिए जी, अभी आज की जद्दोजहद शुरू करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप जो है ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, काम पे निकल चुके हैं, कहीं मीटिंग के लिए किसी काम से जा रहे हैं। चलिए फटाफट से मुझे ये बताएं कि अभी इस वक्त आपकी गाड़ी चली है तो किस ओर चली है, कहां निकलने की तैयारी है, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं। शेयर दैट विद मी यार, मेरे गुड विशेस आप तक जरूर पहुंचेंगे। 5000 1896 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज, निकिता गांधी का साथ, एक प्यारा सा गाना आपके रास्ते मेरी तरफ से। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

सुनीता सारथी की पावर पैक आवाज कार्तिक का साथ, लकी अली की मैजिकल वॉइस एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म अनजाना अनजानी नाना। हम जो है इन्हें जानते पहचानते जरूर हैं। मिर्ची अंशु भाई साहब, हमारी आधी जिंदगी जो है ना बस इसी बात को जानने में समझने में निकल जाती है कि भाई ये शख्स सोच रहा है तो इस वक्त क्या सोच रहा है। मतलब ना जाने कितनी बार तो हमारी जुबान से ये बात भी निकलती है, भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझ पाना ना ये बहुत मुश्किल है। एंड अक्सर ये जो जुबान से निकलती है ये दो लोगों के लिए खासकर निकलती है, एक तो तुम्हारे स्पाउस यानी कि पार्टनर के लिए जिसमें बीवी वाला किरदार इसमें थोड़ा डोमिनेंट होता है, एंड सेकेंड तुम्हारे बॉस के लिए। भाई ये कब क्या सोच रहा है इसके बारे में समझ पाना ना काफ़ी मुश्किल है। अब इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते पूरी की पूरी जिंदगी जो है ना गुजर जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई तो है शख्स जो तुम्हारी जिंदगी में ये काम बहुत आसान बहुत अच्छी तरह से करने वाली है। एंड ये बात अब तक आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की बात करूं, मैजिशियन की बात करूं, तो उसमें नाम अगर कोई उभर कर आता है तो वो है सुहानी शाह। एंड 25th of September जैसे कि आपको मालूम है वो तारीख है जब कतर के इतिहास में पहली बार सुहानी जो है अपना सुहाना सा परफॉर्मेंस लेकर हम सबके बीच आ रही है। एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। इतना ही चाहूंगी, टिकट्स अब तक बुक नहीं किए तो फटाफट से करो यार, अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी अवेल करने की अभी आपके बीच मौजूद है। स्नूनो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्नूनो सिटी में जाकर अपने टिकट्स जो है वो सिक्योर कर लेना है। इसके अलावा 160 रियाल्स में इस वक्त दो टिकट्स मिल रही हैं। नाउ दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस एट ऑल। एंड इस प्यारे सेवन को खूबसूरत बनाने में अगर किसी ने बड़ा रोल प्ले किया है तो वो है हमारे सारे के सारे पार्टनर्स, कतर कैलेंडर प्रेजेंट सुहानी शाह लाइव इन कतर प्रेजेंटेड बाय आईपे, एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन एंड पापा जॉन्स, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, दिस इज पार्टनर्ड बाय डाइसो जापान एंड होम सर्विस, रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड एड्स, मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड, एंड टिकटिंग पार्टनर स्नूनो सिटी। थैंक यू गाइज फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस फिनोमिनल इवेंट एंड इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ इट। वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। महमूद एंड राघव शातिनिया की आवाज में माशुका का इंतजार है तो ये गाना भी सुना दिया जाए। एंजॉय हबीबी, बंदी का नाम अंशु।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

वल मधुबंती बाक्षी की खूबसूरत सी आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन एंड क्या पावर पैक गाना है यार। मतलब सच कह रही हूँ, गम को सेलिब्रेशन में कैसे बदला जाए, ये कुछ एक गाने ऐसे होते हैं जो हमें जरूर बताते हैं। मिर्ची अंशु। वैसे सच कह रही हूँ, ये ट्रेडिशन जो है बस आज क्या शुरू नहीं हुआ है कि मैंने सैया जी से ब्रेकअप कर लिया या तुम मेरे ना हुए ना सही। जब लोग बाग जो है मतलब 7 सॉन्ग को सेलिब्रेटरी मोड में प्रेजेंट करें, ये 90s के एरा से चलते जा रहा है। अब आप पूछेंगे अंशु कब कहाँ कैसे क्या बात कर रही हो यार, हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो चलिए एक ऐसे आइकॉनिक गाने से इस वक्त आपको मैं वाकिफ कराती हूँ या रूबरू कराती हूँ, जिसकी कहानी सुनकर आपको ना हैरत होगी, क्योंकि ये गाना एक्चुअल में बना था हार्ट ब्रेक के नाम पे, ये गाना बना था दिल तोड़ देने के नाम पे। अब इसकी वर्डिंग्स को जरा गौर से सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए अभी फिलहाल सबसे पहले इसकी आवाज आपको सुना दूं।

आज इश्क तेरा तड़पावे, अब ये आपने वर्डिंग सुनी एंड इसके बाद ये पावर पैक आपकी म्यूजिक सुनी। चलिए आपको मैं सबसे पहले ना एक बात बताऊं, ये गाना ओरिजिनली रिलीज हुआ था साल 1999 में, ठीक है। एंड इसके लिरिक्स अगर किसी ने लिखे थे तो वो है कुमार। इसे कंपोज तो सुखबीर ने किया, लेकिन बात इतनी है कि जब ये गाना रिलीज होने वाला था ना, उस वक्त ये श्योर था कि ये गम में डूबा हुआ बी प्राक की स्टाइल का ये अगला गाना होगा, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली मेंट टू बी अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग। लेकिन सुखबीर पाचे के दिमाग में आया, भाई जब भी ब्रेकअप होता है, जब भी रिलेशनशिप तोड़ते हैं, तो कोई ना कोई रोने की बात तो हर कोई करता है, क्यों ना कुछ इस तरह से किया जाए कि अब जो है लोग इसे आजादी के तौर पर सेलिब्रेट करें, यू नो, एक नई बिगनिंग के तौर पे सेलिब्रेट करें। और इन्होंने डिसाइड किया कि ना यार, चाहे जो भी हो जाए, मैं इश्क तेरा तड़पावे इस पर्टिकुलर गाने को मैं उदास ट्रैक के तौर पे तो नहीं पोर्ट्रे करूंगा, बल्कि ठीक है जो हुआ दिल टूटी छुट्टी, मतलब दिल जो है अब आबाद होने जा रहा है, क्यों ना इस बात को हम सेलिब्रेट करें। एंड दैट्स हाउ इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी एंथम ऑफ ऑल टाइम्स। मतलब जो गाना रोने के नाम से बना था, फाइनली आज हर शादी में, हर इश्क प्यार मोहब्बत के दावे में नाचने गाने की बात आती है तो सुनाया जाता है, बजाया जाता है। किसी ने ये सोचा भी नहीं है कि ये गाने का कॉन्टेक्स्ट रहा तो क्या रहा। अब ये गाना एक बार फिर से आपके बीच में पेश करने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनना, गौर फरमाना। एंड म्यूज़िक के अलावा ना इस वक्त इसकी वर्डिंग सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि हर एक वर्डिंग्स में दिल चूर चूर होने की आवाज़ और बात जो है वो कैसे आती है। स्टेडियम मंशू, एंजॉय।

सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
2: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
1: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

0: Well, सुनने का मन कृष्णा कली साहा की खूबसूरत सी आवाज़ and what a lovely track it is. क्या प्यारा सा खूबसूरत सा गाना, ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बहुत कमाल की बात इस वक्त आपके बीच पेश कर दी जाए.
1: मिर्ची अंशु.
0: Well, देखो कुछ बातें जो है ना हम अक्सर अपनी जिंदगी में काफी लाइटली लेने लगते हैं, लेकिन जब उसे आप गौर से सुनेंगे, ध्यान फरमाएंगे, तो समझ में आएगा कि भाई ये कुछ ऐसी चंद बातें हैं जिनमें जिंदगी का सार जो है ना बहुत बड़े तरह से छुपा हुआ है. अगर सार ही ना सही तो कोई ना कोई ऐसे लेसन्स छुपे हुए हैं जिन्हें आप अगर जेन्युइनली समझने की कोशिश करें तो काफ़ी पर्दे जो है ना भाई वो खुलेंगे भी, एंड काफ़ी धूल जो है आंखों के आगे जो जमी है वो भी साफ होगी. चलिए एक काम करते हैं, ऐसी कोई कहानी इस वक्त ना मेरी जुबानी नहीं किसी और की जुबानी आपके बीच में पेश करूंगी. एक बहुत ही खूबसूरत सा मोनोलॉग है, कॉन्वर्सेशन है, जो एक फिल्म से है जो इस वक्त मैं आपके बीच प्ले करने वाली हूँ. सबसे पहली बात आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना है कि ये है तो है किस फिल्म से, एंड साथ ही आवाज़ है तो किस एक्ट्रेस की है. बाकी इसकी डीप ब्रीफिंग जो है आपसे कुछ देर में हम करेंगे ना, लेकिन अभी फिलहाल आप जानते हैं कि जब जब मैं कोई सवाल पूछूं एंड अगर आप सामने आकर जवाब देते हैं ना भाई, मुझे खुशी होती है, बहुत ज़्यादा होती है. अच्छा लगता है कि स्टूडियो की चार दीवारी में मैं अकेले बात नहीं कर रही, कोई है जो मेरी बातों से कनेक्ट कर रहा है एंड यस उससे रिलेट भी कर रहा है. करेक्ट आंसर अगर पहचान आ जाए तो भेजना है 5000186 पर, 5000186, इंस्टाग्राम मिर्ची वन कातर या मिर्ची अंशु, एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो बाइट ऑडियो मैसेज. सो हियर वी गो.
2: यस आई फील द सेकंड स्टैंडर्ड. बाप रे, शेम शेम, डम काइंड ऑफ फील द सेकंड स्टैंडर्ड. इतनी शर्म की बात थी आपके लिए, हाँ, कि आप ऑल द वे वापस आ गए इंडिया ओनली बिकॉज आई फील द सेकंड स्टैंडर्ड. और जब मैं फाइनली खुश थी, जब मैं फाइनली खुश थी पैपी और नानी के घर में, मुझे वहां से भी ले गए, उनसे दूर कर दिया. यस पद्म भूषण जस्ट फॉर दैट.
0: मैन दिस इज सो टचिंग यार, दिस इज सो वेरी टचिंग. मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि आवाज़ है तो है किस एक्ट्रेस की, एंड ये मोनोलॉग आपने सुना तो किस फिल्म में सुना. बाकी बातें अब से कुछ देर में. 5000186 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल एश किंग एंड शाशा तिरुपति की आवाज़ में ये अगला गाना फ्रॉम द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड. एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु.

Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. ये पूरा का पूरा गाना अपने आप में किसी शायरी से कम नहीं है ना. मिर्ची अंशु यार मुझे ऐसा लगता है कि जब जुबा इतनी प्यारी, अल्फाज इतने खूबसूरत एंड साथ ही आपकी आवाज़ में एक अलग ही दमदारी, तो लिख कर क्यों भेजना. नहीं, ये दरख्वास्त मेरी बस उन्हीं लोगों से है जिन्होंने रिप्लाई जो है ना पूरी तरह से लिख के भेजा है. मतलब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच आज पेश किया एक मोनोलॉग जिसे आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से एंड साथ ही किस एक्टर पर पिक्चराइज्ड है. बहुत सारे रिप्लाईज आए लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ना लिख कर भेजा है. कोई ना यार, आपने जवाब भेजा, वो लिखने के जरिए ही उसकी आवाज़ जो है मुझे सुनाई दे दी. चलिए, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, मैं जल्दी से ये मोनोलॉग एक बार फिर से सुनाती हूँ. अभी भी अगर आपको लगे कि आपने सुनते सुनते आइडेंटिफाई कर दिया है तो जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर भेज देना 5000 1896 पर. एंड हियर वी गो.
1: यस, आई फील द सेकंड स्टैंडर्ड. बाप रे, शेम शेम, डम काइंड ऑफ फील द सेकंड स्टैंडर्ड. इतनी शर्म की बात थी आपके लिए, हाँ, कि आप ऑल द वे वापस आ गए इंडिया ओनली बिकॉज आई फील द सेकंड स्टैंडर्ड. और जब मैं फाइनली खुश थी, जब मैं फाइनली खुश थी पापी और नानी के घर में, मुझे वहां से भी ले गए, उनसे दूर कर दिया. यस,
0: उफ यार, उफ. आई मीन सो टचिंग एंड सो ट्रू इट इज़. मतलब अगर मैं इस बात को देखने की कोशिश करूं तो भाई ये जो है ना पूरी तरह से दिल में लगती है. लेकिन सबसे पहले ये बता दो, आप सबने जिन्होंने भी रिप्लाई किया, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर इस फिल्म की हम बात करें तो फिल्म का नाम है डियर जिंदगी. आलोक, थैंक यू सो मच. पूनम, अहमद, नावेद एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. लेकिन हाँ, ये कुछ लोग हैं जो रेगुलरली शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो सोचा कि जल्दी से क्यों ना इनका नाम लिया जाए. बट एवरी सिंगल पर्सन हु रेस्पॉन्डेड, आई रियली रियली अप्रिशिएट योर रेस्पॉन्स. डियर जिंदगी द फिल्म डायरेक्टेड बाय गौरी शिंदे. इस फिल्म में कायरा के रोल में अगर कोई नजर आए तो वह हैं आलिया भट्ट एंड डॉक्टर जग खान के तौर पे अगर कोई नजर आए तो वह हैं शाहरुख खान. एंड द फिल्म वॉज रिलीज इन द ईयर 2016. यार हम ना बचपन से ही बच्चों के ऊपर ना जाने कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, खासकर पढ़ाई को लेकर. बच्चा अगर फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट आ रहा है, भाई कितनी खुशी, अपरंपार, लेट्स सेलिब्रेट इट. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन है, भैया बच्चा जो एकदम होनहार शानदार है. लेकिन अगर इसके मार्क्स 99 के बजाय 97 भी आ जाए, तुमने किया क्या है भाई, ये सीरियस ही नहीं है. देख रहे हो फोर्थ ग्रेड में 97% आए, इसके क्लासमेट के 100 आने लगे हैं. यार फॉर गॉड सेक, बख्श तो यार बच्चों के बचपन को बचपन ही रहने दो. एक बात बताना, हमें से ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज टाइम में भी, शायद हम डिस्टिंक्शन तो बहुत दूर की बात है, फर्स्ट डिविजन से पास हुए थे. घर वालों ने इतना प्रेशर क्रिएट किया, ना जाने हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ. लेकिन अगर आज के डेट में अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करें, हम सब जो है अपने अपने मुकाम में, अपनी अपनी मंजिल में किसी ना किसी तरह से पहुंच चुके हैं. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ना यार बच्चों को सिखाओ मत, पढ़ाओ मत, जरूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ उनके बचपने को मार देने के. यार बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं है. 6th, 7th, 8th ग्रेड में ना अगर जरा से मार्क्स कम आ गए, कुछ नहीं बिगड़ेगा. लेकिन वो बचपन की खुशहाल अच्छी जिंदगानी वाली मेमोरीज क्रिएट हो गई ना, वो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. नाउ दिस इज अ थॉट व्हिच इज वर्थ थिंकिंग. ऑलराइट, अगर मेरी बात सही लगी तो एक थम्सअप भेजना 5000 1896. ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची1 कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल जसलीन रॉयल की आवाज़ जिंदगी से प्यार रहे हमेशा रहे, ये गाना इस कहानी को बयां करता है. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vieva la burga. Milchi, burga.
1: Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल,
1: मालूम
2: से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूं मतलब नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
1: फोन मत करिए मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर
2: दिया क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
3: Mirchi, fresh maal.
9: Imran Hashmi ke songs aur playlist hits, dono ka rishta purana hai. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

Well, Javed Ali ki khubsurat si awaaz and what a lovely, beautiful, pyara sa track it is. Bhai, ye wahi gaana hai jisne hamari zindagi mein real ki bahar jo hai, wo lekar aaya, sort it lekar aaya. भाई साहब, अब जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वर्ल्ड में हम सिर्फ रहते नहीं हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं. वेल, इस वक्त अगर कतर से आते हुए एक बड़ी खबर की बात करूं तो इतना समझ जाएं, जहां पे एक तरफ डिजिटलाइजेशन के वर्ल्ड पे हम जी रहे हैं, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हर दिन यहां पे तगड़ा होते जा रहा है, हेल्थ केयर जो है हम सबकी जिंदगी को और बेहतर बनाते जा रहा है, एजुकेशन के फील्ड में हम जो है अपना नाम ऊंचा करते ही जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री की बात करूं तो इतना समझ जाए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते कतर इज ऑल सेट टू सेट अप इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैक्ट्री. बिल्कुल ठीक सुना आपने. तो अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैजिक आप सिर्फ कतर में आते हुए नहीं देखेंगे, उसे पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड इन बिल्ट इन दोहा इन कतर इस टैगलाइन को प्राउडली आप एडॉप्ट करते हुए ही देखेंगे. लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये किसके जरिए हुआ है? वेल, दोहा बेस्ड GTA इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, इन्होंने अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है UK बेस्ड वॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के साथ, एंड ये दोनों मिलकर इस वक्त कतर में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं. अब अगर इसके पूरे के पूरे इवैल्यूएशन को आप देखने की कोशिश करेंगे तो भाई, इट इज प्रोजेक्टेड टू बी अराउंड $11.64 बिलियन एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $31.66 बिलियन बाय 2031, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. तो अब जो है जब आप लेबल्स एंड टैग्स देखते हैं ना, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान एंड बहुत सारे देशों में, वहीं प्राउडली कह पाएंगे ये जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी आप चला रहे हो ना जी, ये आपके दिमाग में कुछ ऐसा सर्किटरी लगाएगी कि आप समझ जाएंगे ये सिर्फ कतर में चलती नहीं है, कतर में बनाई भी जाती है. हाँ जी, अरिजीत सिंह की आवाज, सचिन जुगर की कॉम्पोजिशन. आपको खबर नहीं थी, मैंने खबर दी तो ये गाना भी सुना दूं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु. मैं

0: check. Hey yo, this one is for all the little rock stars.
1: Vacation over हुआ है, अब जाना होगा school. Late morning उठने का बंद होगा rule. Bags on your shoulders, energy रखना full. क्योंकि मिर्ची लेके आ रहा है party super cool. Set your dreams, set your goals, confidence का tool. अब time आ गया है, सबको जाना होगा school. So join करो ये

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

गुलशान की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, क्या खूबसूरत सा गाना। वैसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर तन्हाई की बात करें, इस फीलिंग एंड इमोशन की बात करें, तो जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना कि तन्हाई जो है गानों में हो, उस टाइम पास जोन में हो जहाँ पर आपको कभी असल में ये फीलिंग जो है ना वो महसूस करने की कभी नौबत आए ना, और कभी ना आए। देखो यार, ये जो दो शब्द है ना, मैंने बचपन से काफ़ी सीखे हैं, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी तरह से इन दोनों शब्दों की मीनिंग समझाई गई है। पहला है लोनली एंड सेकेंड है सॉलिट्यूड। अगर लोनली इस शब्द की मीनिंग को आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, सो इट इज़ बेसिकली तन्हाई, जब इंसान जो है खुद में बहुत अकेला महसूस करता है। और सेकेंड होता है सॉलिट्यूड। डिफरेंस कुछ इस तरह से है, सॉलिट्यूड इज अ चॉइस, जब इंसान इंटेंशनली भीड़ से, दुनिया के उस सारे शोर शराबे से कुछ पल के लिए अलग हटना चाहता है, क्योंकि कुछ वक्त वो खुद के साथ बिताना चाहता है। सॉलिट्यूड हर रोज हर दिन आपकी जिंदगी का एक मैंडेट पार्ट होना ही चाहिए। जब कुछ वक्त आप सारे डिजिटल मीडिया से दूर, सारी टेक्नोलॉजी से दूर, शोर शराबे से दूर, खुद के साथ रिफ्लेक्शन के लिए बताएं और खुद को ज्यादा करीब से समझने की कोशिश करें, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड योर ओवरऑल लाइफस्टाइल। लेकिन तन्हाई, जिंदगी में कभी ऐसा मौका होना कि लगे कि यार मैं बहुत लोनली महसूस कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है ना, तो भाई लेट इट आउट। जिससे भी आप करीब हैं, नहीं है तो एक स्ट्रेंजर ही सही, आपका कुलीग ही सही, लेकिन जो आपकी फीलिंग है ना, उसे दिल से बाहर निकालें, उसे लोगों तक पहुँचाएं। क्यों यार, जब हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पास इतनी रोशनी हो सकती है, तो हम खुद को अकेला महसूस करें तो क्यों करें? क्या कहती पब्लिक? स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है। अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
3: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people, it's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क, जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
2: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। इट इज वेरी इजी टू ट्रोल, बट इट्स नॉट इजी टू गो टू द जिम। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood Bordal, Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live in

0: सुनिधि चौहान की खूबसूरत सी आवाज एंड अनदर पावर पैक ट्रैक। चलिए, ये तो मैंने आपको इस वक्त सुना दिया, लेकिन एक कमाल गजब की खबर भी आपके बीच पेश कर दी जाए।
1: मिर्ची अंशु,
0: अरे दोहा वालो, मेरी बात मानो, मौका जाए उससे पहले आओ। लेकिन कहाँ अपनी टिकट बुक करनी, सुनो सिटी यानी कि सुनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सुहानी शाह लाइव की टिकट्स जो है फटाफट से बुक करना है। बिल्कुल ठीक सुना आपने यार, आपकी और मेरी मेंटालिटी जो है ना यार बड़ी कमाल है। मतलब एंड तक जब तक कोई चीज़ हमको फ्री में ना मिले ना, हमारी जिंदगी में वो तृप्ति तो आती नहीं है। बचपन का ही दिन याद कर लो, जब तुम सब्जी भाजी खरीदने अपने माँ बाप के साथ जाते थे, धनिया खरीदने पर जब तक वो दो मिर्ची मुफ्त में नहीं मिलती थी ना, नहीं तुम्हें नहीं लगता था कि तुम्हारी शॉपिंग जो है वो हुई है एंड पूरी हुई है। इनफैक्ट आज की डेट में जब भी किसी एग्जीबिशन में जाते हो भाई, वो एग्जीबिशन वाले का सामान खरीदो या ना खरीदो, लेकिन हर एक दुकान में जाके वो जो खजूर तुम चखते हो, साथ में अंजीर तुम खाते हो, अरे तुम्हारी कहानी बहुत अच्छे से जानती हूँ, इवेंचुअली तुम्हारी तरह मैं। लेकिन भाई साहब, मुफ्त का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सुहानी शाह को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि मुफ्त में टिकट्स मिले, लेकिन हाँ डिस्काउंट पे जरूर मिल सकती है। एंड अगर आपको लगता है कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो पहली एंड आखिरी बार आपकी जिंदगी में आया है इसे शामिल करना है, तो फटाफट से स्नूनू सिटी एप्लीकेशन में जाना है, स्नूनू को डाउनलोड करने के बाद एंड इस वक्त अपनी टिकट्स को सिक्योर करना है। एक बंपर ऑफर ये भी है कि 160 रियाल्स में दो टिकट्स मिल रही हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जल्दी जाओ अपनी टिकट्स जो है वो बुक करके आओ। बाकी विशाल डिडलानी सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना सुनाती हूँ एंड 25th ऑफ सितंबर को आपके साथ मिलकर सुहानी शाह का मैजिक लाइव विटनेस करूंगी कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में। हुआ शुक्रा।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, वन रिपीट।

0: वेलकम द सेट नीरज श्रीधर की पावर पैक आवाज कॉकटेल 2 से ये गाना भाई एक बार फिर से हमारी जिंदगी में वो कमाल का मैजिक जो है ना वो लेकर आ ही गया। लेकिन 2 की बात करूं तो ये नंबर जो है ना जिंदगी में बड़ा खास बड़ा स्पेशल है, बताते हैं कैसे। मिर्ची अंशु यार, हर वो एक बच्चा जो अपने घर पे दूसरे नंबर पे आता है इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर लेता है। मतलब जिस घर में 3 बच्चे हों, देखो बात इतनी है कि जो बड़ा वाला है ना वो तो सबका बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। यार सबसे बड़ा है, घर की जिम्मेदारी संभालता है, घर का पहला बच्चा है, मतलब उसके लिए हर किसी के दिल में ना अलग ही इश्क प्यार मोहब्बत होता है। अब बात आती है तीसरे नंबर की, यानी कि सबसे छोटे की। अरे सबसे छोटा है, अब कोई इससे प्यार ना करे तो कैसे करे, हमारे घर की जान है। छोटकू है तो छोटू है, छोटी है, जो भी नाम देना दे दो, सारा छोटे से ही शुरू होता है, उसके लिए तो अलग ही प्यार है। मतलब समझ में नहीं आता कि हमने क्या बीच में पैदा होकर गलती कर दी। गलती तो वैसे माँ-बाप ने की, हमने थोड़ी ना कहा था कि पहले नंबर पे ना लाओ आखिरी पे ना लाओ, तुम लाए। लेकिन वो पूरी माइलेज जो है बड़े एंड छोटे के बीच में, हम जो है ना सैंडविच की तरह बीच में दब के रैप होके खत्म हो जाते हैं, लेकिन ना वो बीच वाले को कभी नंबर 2 वाले को माइलेज ना मिलती। नहीं ये कहानी मेरी नहीं है, मैं तो घर की छोटी हूँ जी। लेकिन हाँ, जो नंबर 2 पे मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऐसी कहानी कुछ बयां कर पाते हैं। क्या आप इस कहानी से रिलेट करते हैं, क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है? यार आई वुड वॉन्ट टू नो हाउ एग्जैक्टली इट इज़ फॉर यू। 5000186 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम Mirchi1 कतरिया Mirchi Anshu। मीनवाइल अगर 2 की बात करूँ तो सिर्फ 2 ही हफ्ते रह गए, 2 weeks रिमेनिंग, जब स्कूल का ये मैजिक पहले या तीसरे नंबर नहीं हर एक बच्चे के लिए शुरू होगा। Are you ready for that? बच्चों से ज्यादा माँ बाप को तैयारी करनी होती है। सुबोध शर्मा की आवाज यानी अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची फ्रेश माल। लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची,
2: नवीद
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप, वो लूप के लिए क्या करना पड़ेगा,
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ,
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूं फिर मुर्गा बनाऊं। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: हाँ, भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताऊं।
1: ओके चलिए। हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
1: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किस दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। ड्रिवन बाय Shackman Trucks, zabardast power aur cleaner energy ka naya chapter. Shackman Heavy Duty Trucks and Boom Trucks, power that saves. Distributed by Carmel Group. जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah.

0: करण ओजला की एक खूबसूरत सी आवाज नेहा कक्कड़ का साथ है ना, आए हाय। जब जब ये गाना सुनती हूँ ना, ऐसी कोई फीलिंग जो है मेरे दिल में जरूर आती है, लेकिन आए हाय अभी ये वाली फीलिंग भी जरूर आ रही है।
1: मिर्ची अंशु
0: महज 2 हफ्ते की दूरी पे हैं हम, एंड उसके बाद हमारी जिंदगी में अगर कोई सिलसिला शुरू होगा तो वो है जद्दोजहद का, जब फाइनली बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। एंड सबसे बड़ा सवाल हर दिन जहन में बस ये आएगा कि टिफिन में डालें तो आखिरकार क्या ही डालें। नहीं, हमारे बचपन ही बहुत अलग थे यार, हमारा दिन ही अलग था जब हर दिन मम्मी जो है टिफिन में सिर्फ 2 चीज़ें डालती थी ऑल्टरनेटिवली। एक दिन आलू की सब्जी एंड रोटी, एंड दूसरे दिन भिंडी की सब्जी एंड रोटी। एंड भाई हर दिन ऐसा लगता था जैसे खाने में कोई नया मेन्यू है, लेकिन आज के रेट में बच्चों में अगर आप हफ्ते भर एक मेन्यू बनाकर डाल दें, नेक्स्ट वीक भी अगर उसे रिपीट करने की कोशिश करें ना, तो उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मम्मी आपको कुछ नया बनाना नहीं आता क्या, जरा देखो उसकी मम्मी तो कितना अच्छा बनाती हैं। अब कॉम्पिटिशन जो है अपने खुद के टिफिन से नहीं रह गया है, वो उसकी मम्मी के टिफिन से रह गया है। क्या दिन थे यार, एक ही बैग को हमने ना जाने कितने साल चलाया है, उस एक जूते को जब तक वो फट ना जाए या उंगली जो है फाइनली अंगूठे के जरिए बाहर ना निकल जाए, हमने उसे फिर भी पहनाया है। एक ही यूनिफॉर्म को मुड़वा मुड़वा कर मम्मी ने 3 साल चलाया है, और उसके बाद परत खोल खोल कर भी उसे 3 साल तक चलाया है। आज की डेट में लगता है जब बच्चों को देखते हैं इनकी ज़िंदगी कितनी प्रिविलेज्ड है ना, लेकिन शायद इसे कहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का स्ट्रगल कम होने का पूरा ये अभियान। वो कहते हैं ना कि अगर 3 जनरेशन्स को आप देखने की कोशिश करें तो यूजुअली पहली जनरेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करती है, सेकेंड जनरेशन की लाइफ जो है थोड़ी इजी होती है, एंड उसके बाद की जो जनरेशन आती है भाई वो जो है आराम से अच्छे कर्म जो किए हैं बैठ के फल खाने का काम करते हैं। बड़े यार खुशी है कि हमने जो मेहनत की है फलस्वरूप किसी और की ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हो रहा है, एंड उम्मीद यही है कि हमारे बच्चे भी अच्छा करें और बहुत अच्छा करें, एंड आने वाले दिनों में जो स्कूल का अभियान शुरू हो रहा है उनकी ज़िंदगी में सक्सेस का रेशियो जो है सबके लिए अच्छा लाए। चलिए जी, स्कूल की बातें तो हमने याद कर ली, लता मंगेशकर एंड उदित नारायण जी की आवाज़ में प्यारा सा गाना सुन लें, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Well, विशाल शेखर की पावर पैक आवाज केके का साथ एंड क्या दमदार गाना है यार। मुझे बहुत अच्छी तरह से इस गाने की जरा सी हिस्ट्री याद है।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो यार, बात इतनी है कि गाने की हिस्ट्री तो आपको विकिपीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मिल जाएगी, लेकिन किसी भी गाने से जब तक आपकी कोई हिस्ट्री, आपकी कोई याद जुड़ी ना हो, तब तक वो गाना आपके लिए यादगार बने तो कैसे बने। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, अगर मैं 10 बहाने इस गाने की बात करूं, सो आई वॉज इन ग्रेड 10th आई बिलीव, जब इस गाने के बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद हमें एक पनिशमेंट भी मिली थी, क्योंकि इस गाने पर जब हमने टीचर्स डे के ओकेशन पर परफॉर्म किया था तो कुछ इस तरह से हम कूदे फांदे थे कि लिटरली स्टेज जो है वो टूट गया था और हम सब के सब जो है ना वो नीचे गिर चुके थे। एंड हुआ कुछ इस तरह से था कि हमें पहले ये वार्निंग मिली थी कि भाई नाचो तो जरा संभल के नाचना, स्टेज जो है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं, ऐसा कोई कांड मत कर देना जिससे स्टेज जो है तबाह हो जाए। एंड ये वार्निंग मिलने के बाद भी हमने कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस दिया कि ताबड़ तोड़े नहीं लेकिन स्टेज तोड़ जो है जरूर हुआ। तो हमें वो सराहना तो बाद में मिली या हमारा ख्याल तो बाद में रखा गया, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर अगले एक हफ्ते तक हम जो है ना डेली ब्लैक बोर्ड साफ किया करते थे। ये किसी पनिशमेंट से कम नहीं था। चलिए जी, लेकिन आज पनिशमेंट की बारी नहीं है, आपकी जिंदगी में खुशहाली ऐड करने की बारी है। अरे अच्छे खासे एक्सचेंज रेट ने जो हमारी जिंदगी में दस्तक दी है। वेल, अगर आज के एक्सचेंज रेट्स को देखने की कोशिश करें तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 26.14, लंदन रुपीस 91.60, पाकिस्तानी रुपीस 76.21, जनाब नेपाली रुपीस 41.76 यानी कि 76, बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.75। हाँ जी हुजूर, फटाफट से पैसे भेजें घर नहीं तो अंशु के अकाउंट में, बाकी खुशियों का पिटारा खोल के रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन। It's hard. Seheri Babu, enjoy. Bandi ka naam Anshu.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of?
4: वास्तव
3: में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
5: पावभाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
4: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
5: शोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
5: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
5: पीके मेनन।
3: खादम।
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव। रेडियो स्टेशन का मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: Mahendra Singh Dhoni के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

0: वह शाश्वत सचदेव की आवाज, मधुमंती बाक्षी का साधन, भाई शरारत से भरा ये शरारत गाना, आए हाय दिल खुश हो गया जी।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, जिंदगी में कुछ होना हो लेकिन शरारत जो है ना आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहे, ये बात जो है मैं 101% कहूंगी। शरारत से कहने का मतलब है जो अंदर का बच्चा है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। देखो, हर किसी की ख्वाहिशें होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, ये सारी बातें हैं और ये आपकी लाइफ को लाइफ बनाती हैं। लेकिन इन सभी प्रोसेसेस के बीच अगर आपने अपने अंदर के बच्चे की शरारतों को दबा दिया, कहीं खो दिया ना यार, तो ऐसी जिंदगी क्या ही जिंदगी। तो मैं कहूंगी जद्दोजहद में लगे रहें, काम की होड़ में भिड़े रहें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें, लेकिन वक्त जो है कम अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, चाहे जो भी हो, अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रख, जब भी मौका मिले वो हल्की फुल्की शरारतें जो है ना वो किया करें एंड कंटिन्यूड रखें। वैसे जो प्यारे प्यारे आपके खूबसूरत से मैसेज आते हैं, वो जो फनी जोक्स आते हैं ना, जिस तरह की शरारतें आप करते हैं, भाई सच कहूँ उन्हें सुनकर पढ़कर दिल में ना कहीं खुशी मिलती है। तो बस इसी तरह अपना प्यार हमारी जिंदगी में बनाए रखें, बाकी आपसे सारी शरारत करवाने के लिए हम बैठे हैं ना भाई, कलेजे की ठंडक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए टिक्के बने रहें, सुनते रहें हबीबी कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। मुलाकात होगी कल बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मसलामा।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था, तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा, पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello, madam. Good evening. बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना
3: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत, बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगे तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
2: मारूंगी ना
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
3: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था, ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: I'm sorry, नवे, I'm sorry.
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
2: कुकड़ो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ।
7: इट्स ऑल डाउन टू धोनी इज़न्ट इट, 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो

कैंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
2: मैं करूँ?
3: आप करोगे?
2: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
3: वो तो पता है मेरा बस चलता है एक-एक को घुसन मार के आती हूँ।
2: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
1: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virva la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
1: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? मैं लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से, मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
1: है?
3: या बदतमीजी, बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
1: हेलो
3: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो अब वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है, सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और धिकताना गाना वहीं से शुरू होता है राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त That scene was actually not planned, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। एंड शी इन एन इंटरव्यू टोल्ड कि यू नो सलमान खान वॉज अ प्रैंकस्टर एंड यू नो ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Snoo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन, जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए क्यों जिस्म थरथराए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCT Snoonu. Book yours now.
5: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen.
9: Happy, taste good. Papa John's, enjoy double delight offer.
5: Two small pizzas at 44, two medium pizzas 66 and two large pizzas at 99 riyals. Papa John's, better ingredients, better pizza.
10: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Alwakra, Almeshaf and Barwa City. Kim's Health, because aap deserve karte hain best care.
5: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues. Refreshment partner Baladna Milk Laban Yogurt. Experience the fresh creamy taste that Qatar loves, refreshing every moment with every sip and spoon. Partnered by Homes R Us. Super sale 20 to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan, your one-stop back to school shop. Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events, your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
8: Visual media partner Rehab Media.
5: Production partner Symphony.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का K drama का definition is very different from 2000s का K drama.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s kids K dramas नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट.
2: यादों को चिट्ठी.
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के. हमारे घर में नहीं थे लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ. वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है. मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था. लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छुपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी. तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था. बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार. आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास. तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Whipple, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
2: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
2: नहीं नहीं बात तो सुनो भाई साहब
3: हाँ बताइए
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
3: नहीं वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
3: मैं कुछ भी करूँ यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
2: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो
3: बिल्कुल
2: मुझे
3: बिल्कुल से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
2: जा कहाँ रहा है
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको
3: वैसे आप बुरा मत मानना आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
2: यार क्या बात कर रहा
3: हूँ नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं यार मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं फोन काट रहे हैं यार
2: आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
6: उसे सब पता है Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, एक किस्सा तो सुनाइए यार।
2: But I remember one such party जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और हाथ में दूसरी जॉब भी नहीं है, क्या करूँ?
1: वेल, ये बात तुझे पहले नोटिस करनी चाहिए थी सेनोरिटा। अब सेम जॉब ना मिलेगी दोबारा।

0: 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
1: बज चुके हैं रात के 8. पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे.
2: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है शाम के 4. मस्त मौला गौरव के साथ शुरू होता है शाम शानदार.
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

इधर गाना खत्म हुआ माशू का और इधर आपका आशिक आ गया। एडी 9.6 मिर्ची वन पर आज मस्त मौला गौरव थोड़ा शायराना अंदाज के साथ शुरुआत करेगा शाम शानदार की सूरज की तपिश और हवा है शांत, गर्मी में सबका बुरा है हाल, न चैन है दिन में न रात को आराम है, इस उमस भरी गर्मी का अलग ही अंजाम है। मतलब सच कह रहे हैं, मौसम ऐसी तपिश पैदा कर रहा है, उसके बाद ऐसे पसीने छुड़वा रहा है कि हमें पानी के नहाने की जरूरत ही नहीं हो रही है। एक सेंगले बाहर निकलिए, पसीने से ही नहा लेंगे। फिलहाल इतना ही कहूंगा, इस ह्यूमिडिटी वाली गर्मी को यूं ही कोसते रहिए पानी पी पी के, ताकि सूरज चाचू को थोड़ी दया आए और हमारे लिए अच्छा मौसम लेकर वो जल्द आए। आधा अगस्त बीत चुका है, आधे अगस्त का और इंतजार, और धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे की तरफ जरूर जाएगा मेरे यार। 89.6 मिर्ची वन पर एंटरटेनमेंट का जो टेम्परेचर है वो ऑन होता है ऊंचे लंबे कद के गाने के साथ। शुरुआत करते हैं शाम शानदार की मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ?
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ, फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है, मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकुड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: एक टीम के प्लेयर्स की सबकी जर्सी का नंबर सेम था और ये और कहीं नहीं, ये हमारे कतर में हुआ है। अलसद के प्लेयर्स ने किया है अट्रिब्यूट टू लेट फादर अमीर।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, यहाँ बताना चाहूंगा कतर फुटबॉल क्लब के अलसद के प्लेयर्स ने कल जो पिच पर किया वो सबके लिए बड़ा ही खास बन गया। यस, मैं आपको बता दूं, टीम के सारे प्लेयर्स कंधे से कंधा मिलाकर जब एक साथ खड़े हुए तो पूरी की पूरी ऑडियंस ने देखा कि उनके ऊपर नंबर 52 लिखा हुआ है, क्योंकि ये मामूली नंबर नहीं है, ये नंबर है साल 1952 का, जो हमारे महरूम लेट फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी जी का बर्थ ईयर है। उसी नंबर को सारे प्लेयर्स ने अपनी जर्सी पर लिखवाया था और एक मोमेंट ऑफ साइलेंस के साथ ये ट्रिब्यूट देकर सबने तालियां बजाई। एंड ये एक ऐसा सम्मान था जो फादर अमीर डिजर्व करते थे, एंड आई एम श्योर इस सम्मान के साथ उनकी लेगेसी को कहीं ना कहीं एक रियल ट्रिब्यूट दिया है अलसद के प्लेयर्स ने। और ट्रिब्यूट बहुत देखे होंगे आपने, पर ये 52 नंबर जर्सी वाला, सारी टीम के खिलाड़ी एक ही जर्सी में उतरे, ये सिर्फ हमारे कतर में होता है। एंड मैं इतना ही कहूंगा, ये खिलाड़ियों ने ये बता दिया कि उन्हें फादर अमीर से कितना प्यार था। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

वो लड़की आ रही यहाँ। बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को पढ़ सके, जो तुम्हें हर कदम शौक दे सके, वो सुहानी शाह आ रही है कतर। एंड डेट इज फाइनल 25th of September, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अपने टिकट्स बुक कर लो एसटी सुनू पर, जहां अलीबर्ड ऑफर चल रहा है। मेंटलिस्ट सुहानी शाह आ रही है 25 सितंबर को QNCC में, एंड प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं डेरी क्वीन, पापा जोन्स, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ, साथ ही साथ हमारे इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया। अगर हम पार्टनर बाय की बात करें तो डाइसो जापान होम्स आर अस, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, एंड ब्रांड एंड प्रिंटिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, हमारे मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड एंड स्नूनु सिटी। ये सब के सब एक हुए हैं ताकि हम और आप उस लड़की को देख पाएं जो हमारे दिमाग को पढ़ सकती है, हमारे लिए एकदम फोर्स थिंकिंग कराकर हमारे मन में क्या चल रहा है ये समझ सकती है, लोगों को बता सकती है। बस तैयार हो जाओ एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए जो इससे पहले आपने कतर में कभी नहीं लिया है। फिलहाल तो मस्त मौला गौरव आपके साथ, एस सिटी पर फटाफट टिकट बुक कर लो यार, हैं जी, डिस्काउंटेड प्राइस वाले अलीबर्ड ऑफर में, मिर्ची इट्स हॉट।

0: के लिए 100 झूठ बोलने पड़े, एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स है। जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट SCD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलना छोड़ दें, अभी गुड आफ्टरनून पे ही टिके रहें। क्योंकि दिन के किसी भी टाइम निकलिए, ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी का आलम वैसे का वैसा ही बना हुआ है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: शाम के 9:45 के करीब का टाइम हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 42-41 के आसपास टिका हुआ है। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पहुंचा 44 डिग्री सेल्सियस, वही मिनिमम अराउंड 34। बड़ी बात यह है कि हवाएं आज बिल्कुल नहीं चल रही, ह्यूमिडिटी एकदम जबरदस्त तरीके से हम पे अब कब्जा जमाने वाली है और रात तक ये और बढ़ेगी, इसलिए घबराना नहीं है। पानी पी पी के इस ह्यूमिडिटी को, इस टेम्परेचर को कोसते रहना है ताकि मन को ठंडक मिले और एक दो महीने में मौसम ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा बोल के आपके दिल को बहला दूं। 89.6 मिर्ची वन पर फिलहाल गाना उस जगह का जहां से सुन के ही ठंडक महसूस होती है, मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।
1: मिर्ची के स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और मेरे साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 20 साल पहले ये किसी हॉरर शो का एक एपिसोड हो सकता था, लेकिन आज आज ये टेक्नोलॉजिया है। मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सज्जनों, बताना चाहता हूँ कि कतर में अब इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सीज का नेक्स्ट टेस्टिंग फेज शुरू हो गया है, जहाँ पर कार्स बिना किसी ड्राइवर के आराम से चल रही है। LIDAR और AI सेंसर्स के साथ ये गाड़ियां खुद ब खुद सड़कों पर चल रही है, सेफ तरीके से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है, अपना सेफ ड्राइविंग का डिसीजन खुद ले रही है। जहां ट्रैफिक कंजेशन है वहां आराम से ड्राइव भी कर रही है। और अच्छी बात यह है कि पहला फेज कंप्लीट, अब दूसरे फेज की तरफ बढ़ गए। और ऑनेस्टली मेरा यह मानना है कि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे हमारे कतर में, रोबो टैक्सीज देख के कहेंगे भाई कतर अलग लेवल पे जा चुका है, ये तो फ्यूचरिस्टिक सिटी है। तो है, हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, हमने प्रयास किया है पिछले 20 सालों में, जमीन आसमान एक कर दिया है, तो अब रोबो टैक्सीज का सपना भी पूरा हो जाएगा। विश्वास कीजिए, आज से 20 साल पहले फिल्मों विल्मों में किसी हॉरर शो में एक एपिसोड आता था जहां ड्राइवर लेस गाड़ी चल रही है और पीछे बैठे लोग डर रहे हैं, अरे बाप रे गाड़ी कौन चला रहा है। लेकिन आज आज ये टेक्नोलॉजिया बन गया है, और इसीलिए कहता हूं समय के साथ आपने जो भी सपने देखे हैं विश्वास कीजिए वो एक दिन पूरे होंगे, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सपना है वो तो सच में हकीकत बनने के लिए आपको आया है। तो आप अपने ऐसे किसी सपने पर काम कीजिए, आप भी कर लेंगे, हो जाएगा, करने से ही होता है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Oh, madam, good evening.
2: Hi.
3: Bence bolle wana wari na izgiva ye. Madam, taazi izgiva wari izgiva. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
2: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
3: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
2: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
3: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
2: हेलो
3: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
4: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर बढ़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
4: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
2: नहीं,
4: से सॉरी,
2: आई एम सॉरी नवे, आई एम सॉरी।
4: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है।
2: कुकड़ू गो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पगला।
7: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
8: इट्स ऑल डाउन एंड डन, इजंट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

0: पता नहीं।
1: अरे कोई बात नहीं, आपको खबर नहीं है तो हम आप तक पहुंचा ही देते हैं।
0: मस्त मौला गौरव।
1: और अगली खबर उनके लिए जो म्यूजियम्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। यस, तो हम आपको बता दें कि कतर म्यूजियम्स अगस्त के मंथ में भी लेकर आया ढेर सारी एक्टिविटीज उनके डिफरेंट म्यूजियम्स में। अगर हम समर स्पोर्ट्स फन फैक्ट्री की बात करें तो ये चलेगा 1st ऑफ अगस्त से 29th ऑफ अगस्त के बीच 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में। एंड यहां पर आप अगस्त 1st से 29th सेलिब्रेट कर सकते हैं। वेल, म्यूजियम मेमोरी गेम ये नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में 17th ऑफ अगस्त को खेला जाएगा। ये बच्चों के लिए एक जबरदस्त एक्टिविटी होने वाली है। इसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे अगस्त 19th, एंड फोटो खिंचाने का शौक आजकल दुनिया में हर इंसान को है। एंड इससे रिलेटेड एक फायर स्टेशन सिनेमा पर होने वाला है इवेंट अगस्त 19th को। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं तस्वीर नाम से। इसके अलावा फैमिली वीकेंड 20th से 22nd ऑफ अगस्त कतर म्यूजियम में, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए ये फैमिली वीकेंड होगा 20th ऑफ अगस्त से लेकर 22nd ऑफ अगस्त तक आपको इनवाइट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कतर म्यूजियम्स 18th एंड 19th ऑफ अगस्त को वाटर कलर पेंटिंग लेकर आ रहा है, बच्चों के लिए एक जबरदस्त क्रिएटिव आइडिया एंड ढेर सारे इवेंट्स की रेंज। ये बताती है कि कोई बच्चा अगर घर नहीं भी जा पाया तो कोई बात नहीं, उसके लिए मौके ही मौके एंजॉय करने के। एंड मजलिस फिल्म क्लब ये MIA लाइब्रेरी में, यस, आपको मिलेगी अगस्त 30th को। इसके लिए हम आपसे कहेंगे, आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं कतर म्यूजियम्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ये सारे इवेंट्स वहां भी लाइन। एंड ये बस बताना चाहता हूं कि कतर के कोने कोने में सेलिब्रेशन हर दिन चलता है, बस आपको पता होना चाहिए। और पता लगाने के लिए क्या करना है, ट्यून करते रहना है मिर्ची, इट्स हॉट।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: वर्ल्ड चेस चैंपियन यानी कि प्रेजेंटली वर्ल्ड चेस का चैंपियन गुकेश, अगर कोई उनका दिमाग पढ़ ले तो कैसा होगा? अच्छा हुआ सुहानी शाह चेस नहीं खेलती, नहीं तो गुकेश कभी उनसे जीत नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने गुकेश के दिमाग को पढ़ लिया था। एंड ये कैसे हुआ, आइए सुनते हैं।
1: इमेजिन यू सिटिंग एंड अक्रॉस यू इज अ चेस प्लेयर, हूएवर यू वांट, यू कैन सी द पोजीशन ऑन द चेस बोर्ड एंड थिंक ऑफ द मूव, जस्ट थिंक ऑफ वॉट पीस आर यू पिकिंग अप, से दिस पीस इन योर माइंड, लाइक इफ इट इज अ पॉन फॉर एग्जाम्पल, यू विल जस्ट से पॉन, इफ इट्स अ किंग यू विल से किंग, व्हाटएवर इट इज जस्ट से, इज नॉट इवन ब्लिंकिंग, जस्ट थिंक ऑफ द पीस एंड द स्क्वायर, पीस आई नो आईव गॉट इट, आई एम ट्राइंग टू गेट द स्क्वायर राइट, नाइट, आर यू थिंक ऑफ द नाइट, नाइट एच,
2: यस,
1: नाइट एच फाइव,
2: या
0: माय गॉड, नो डाउट उन्होंने गुकेश के दिमाग में उन्होंने कौन सी चाल चली थी ये तक गेस कर लिया। ये होती है मेंटलिस्ट की असली कामयाबी। एंड द मेंटलिस्ट सुहानी शाह आ रही है अपने कतर में, फर्स्ट टाइम एवर प्रेजेंटेड बाय आईपे, बी अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग, 25 सितंबर को होने वाला है। एंड बड़ी बात यह है कि इसमें थोड़े और चार चांद लग जाएंगे, जब डेब्यू किया है जिसने बादशाह के साथ, वो सिंगर यहां पर हमारे साथ होगा, बन जा तू मेरी बन जा बन। एंड इसके अलावा उनके साथ आशी, ये दोनों के दोनों परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड साथ ही साथ सुहानी अपने स्ट्रेंज एक्ट से हम सबके दिमाग को घुमा रही होंगी। जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लो, एससीटी जो कि हमारी टिकटिंग पार्टनर है, जितनी जल्दी हो सके स्नूज पे जाकर एससीटी पर अपनी टिकट्स बुक करो एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। एंड जो गुकेश के साथ हुआ, क्या बताओ आपके साथ हो जाए, आपका भी दिमाग एकदम से चक्कर खा जाए, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अर्जुन, आलिया के बारे में एक ऐसी बात बताओ जो हमें नहीं पता।
3: मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने मुझे फोन करके बोला प्लीज कांग्रेचुलेट आलिया भट्ट फॉर हाईवे। तो आई सेड मेरी भी पिक्चर लगी थी पिछले हफ्ते गुंडे। हाँ, वो है, पर हाईवे में क्या काम किया लड़की ने?
4: पर अर्जुन ने तो हाईवे देखी नहीं है,
3: जैसे
4: तो
3: आलिया ने गुंडे देखी नहीं है। She doesn't like to be entertained. और एक्चुअली सच बात बताऊं तो जो मैंने उसे सिखाया, finally she's been able to inculcate it in her daily life. और इतना डिसिप्लिन लाया है इसकी जिंदगी में मैंने बात कर करके समझा समझा के इसके दिमाग में जो चीजें मैंने घुसाई है ताकि ये जिंदगी भर याद रख सके कि एक्टिंग इज प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट।
2: सम रियली इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अर्जुन कपूर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

ना तारीख अगर 15 हो गई तो मैं अपने वॉलेट की तरफ एक दफा ना देखूं। क्योंकि हमें पता है कि उसमें ढूंढने पे भी कुछ चंद टुकड़े भी नजर नहीं आएंगे। रियाल तो छोड़ ही दीजिए, फिलहाल क्या है आपके पास, रेट बताई दे रहे। राइट नाउ एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 15 पैसे हैं, 26.15 INR। वन कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 91.48। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान रुपीज की जनाब, 76.21 वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.21 पाकिस्तानी रुपीज। और अगर हम बात करें नेपाल रुपीज की, 41.78 तपाई को रेट छ दाई। हाँ जी हजूर, अगर आप नेपाल रुपीज घर भेजने लाई सोच रहे हैं तो रेट छ 41.78, 41.78 का रेट छ। और इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी टाका की बात करेंगे दादा, एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.73, तो 33.73 एक रेट अच्छी तो बांग्लादेशी टाका थी तो मस्त मोलो गौरव मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर, मैंने 3 अलग अलग बिजनेस किए, उनके लिए मार्केटिंग भी किया, पर कुछ बिक नहीं रहा। मैं क्या करूं, कुछ सोल्यूशन बताओ ना।
1: अरे बेटा, सिंपल सा सोल्यूशन है, तू एक काम कर, दुकान ही बेच दे।
2: I'm joking.

0: 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 और आप सुन रहे हैं शाम शानदार मस्त मौला गौरव के साथ
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

कैसा लगता है जब हमारे से भी ज्यादा कोई हमारा ख्याल रखता है। ये हम आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ जो हमारा समय समय पर ध्यान रखती है, कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे सेहत के लिए परेशान रहती है। उन्होंने सारे के सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज और डॉक्टर को एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया है, एंड दिस इज रिगार्डिंग फूड बॉर्न डिजीजेस, यानी कि कोई फूड पॉइजनिंग का कंफर्म केस या फिर सस्पेक्टेड केस दिखाई पड़ रहा है, उससे 24 आवर्स के अंदर उन सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को रिपोर्ट करना है और डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना है। और इनका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका नाम है सेव्स, उसी सेव्स पर इसकी रिपोर्टिंग करनी है ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके और ये काफी बड़ा हो जाए उससे पहले इसे कंट्रोल किया जा सके, तो सही टाइम पर इस आउटब्रेक को रोका जा सके। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिस MOPH ने सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करके कहा है कि आपको फूड पॉइजनिंग केसेस पर जितनी जल्दी हो सके 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। एंड दिस इज व्हाई आई लव कतर, यहां के एक एक चीज इतनी प्यारी है, हमारे और आपकी सेहत का ख्याल ऐसे रखा जाता है मानो हम इस पूरे परिवार कतर का हिस्सा हो। MOPH को दिल से थैंक यू जो हर समय हमारी सेहत के बारे में सोचता है, क्योंकि भैया वाकई इस दुनिया में एक सच्चाई तो है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा अटर चटर पटर मत खाइए, बहुत हेल्दी खाइए ताकि आप फिट एंड फाइन बने रहें। मौसम देख रहे हैं, ऐसे ही मौसम में डायरिया वायरिया हो जाता है। अपना ध्यान रखो। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

कतर आ रही है आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल पे अपने टीवी पे स्क्रोल कर देखा है, उसे अब आंखों से देखने की बारी मिल चुकी है। यस, रूबरू फेस टू फेस सामने सामने होंगी सुहानी और करेंगी वो सारा मेंटल शो जो आपको एकदम चौंका देगा, जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर जैसे गिरिकी पॉइंटिंग, केविन पीटरसन या फिर ऋषभ पंत से लेकर हमारे केएल राहुल तक हुए, या फिर हमारे बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान से लेकर सिद्धार्थ तक, एंड वो सारे लोग जिनको सुहानी शाह ने एक बार जब अपनी गिरफ्त में लिया तो सिर्फ हक्का बक्का नहीं एकदम से शॉक करके छोड़ा। एंड सुहानी शाह द मेंटलिस्ट जो कि दिमाग से खेलती हैं एंड दिमाग से वही आपको सोचने पर मजबूर करती हैं जो वो चाहती हैं, कैसे कर पाती है यही तो आपको देखने आना है। एंड टिकट्स बुक करनी है जाकर एससीटीस नूनू पर, यस, जहां पर अभी अर्ली बर्ड ऑफर चला है, जितनी जल्दी हो सके अपनी डिस्काउंटेड प्राइस वाली टिकट्स ले लीजिए क्योंकि एक बार ये मौका चूका तो फिर आप इस अमेजिंग इवनिंग को देखने का मौका भी चूक जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हम और आप जिंदगी में कुछ अलग देखना चाहते हैं। अब तक हमने बहुत सारे कॉन्सर्ट देखे लेकिन दिस is something different, out of box, and आपने imagine नहीं किया वैसा। 25th of September QNCC में tickets available हैं SCT पर discounted price पर, जाइए ले लीजिए और मस्मौला गौरव को thank you कीजिए जो आपको इतनी अच्छी चीजों के बारे में बता देता है। फिलहाल तो मलंग हो के अगला गाना वेद शर्मा की आवाज में मिर्ची पर, it's hot।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua, la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi. Ye पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं
1: आप? कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास,
3: अरे यार
1: जैसे आपके पास आया कि भी अगर आप खाली बैठे,
3: हो सकता है, हो सकता है, हो सकता
2: है। आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही है? अरे भाई Hello? यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन
1: यार भाई ये नंबर क्या है, तू बता तू क्यों लाइन में आ रहा है?
3: मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूं यार, तू लाइन में आ रहा है, मैं लाइन में आ रहा हूं। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूं यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहां पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
1: है,
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
1: हेलो
3: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो अब वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये कुकुकु।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं,
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

0: इनके सामने दिल भले ही बदतमीज हो, दिमाग को बड़े तमीज में रखना। क्योंकि ये माइंड रीड कर लेती हैं, दिमाग पढ़ लेती हैं। नाम है इनका सुहानी शाह और आ रही हमारे कतर में। यस, कतर कैलेंडर दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। और ये वो शो है जहां पर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी दूसरे को पता चल जाता है, मतलब उस इंसान के अलावा किसी दूसरे इंसान को। एंड इमेजिन करो अगर दुनिया ऐसी हो जाए तो सोचिए सारी बातें पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। लेकिन जब अनु मलिक के सामने सुहानी शाह पहुंची तो देखिए उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ।
1: किसी भी चीज के बारे में सोचिए जो आप मिस कर रहे हैं अभी। अनु जी, आई एम अज्यूमिंग आप कोई मेमोरी के बारे में सोच रहे थे।
2: जी एब्सोल्युटली राइट।
1: और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, इट इज समवेयर फ्यू मंथ्स या मे बी दिस ईयर की चीज है।
2: यस जी।
1: कैन यू थिंक ऑफ द एग्जैक्ट डेट या डे या कुछ स्पेसिफिक है आपके दिमाग में?
2: आई हैव द डेट।
1: इज इट अप्रैल?
3: अनु जी शो छोड़ के जा रहे हैं। अनु जी दंग रह चुके हैं।
1: लेट्स ट्राई एंड डू द डेट। डेट के बारे में सब आपको सोचना है रिपीटेडली रिपीटेडली। 23 23 23 23 23 23।
4: मैं पहुंच होता हूं, आपकी कला को नमन करता हूं।
0: माइंड ब्लोइंग। अनु मलिक कह रहे हैं कि मैं आपके पांव छूता हूं, आपकी कला को नमन करता हूं। ये है मैजिक ऑफ सुहानी शाह, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह जो हमारे कतर में आ रही हैं एंड कतर कैलेंडर लेकर आए हैं, प्रेजेंटेड बाय आईपे, हमारे एसोसिएट पार्टनर्स डेरी क्वीन, पापा जोन्स। एसोसिएट पार्टनर्स के बाद रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, हेल्थ केयर पार्टनर किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर, पार्टनर्ड बाय डाइसो जापान होम्स आर अस, रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी, ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स एंड मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड, टिकटिंग पार्टनर एस सिटी स्नूनू। लेकिन जल्द ही हम और भी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके अर्ली बर्ड ऑफर का फायदा उठाइए, एस सिटी ऐप पर जाकर अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए जो कि अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, इसी उम्मीद में कि आप इस वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना प्लान 25th ऑफ सितंबर का पूरा कर लेंगे। क्योंकि यहां सिर्फ सुहानी नहीं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सिंगर चरण एंड आशी भी आ रहे हैं जो अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगी यही इसी शो पर। तो भाई फुल टू एंटरटेनमेंट डबल डोज के साथ इंतजार कर रहा है, अपनी टिकट्स बुक कर लो, मिर्ची इट्स हॉट।

0: एक्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा ड्रामा इन है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
1: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स. एंजॉय डबल डिलाइट ऑफर.
0: टू स्मॉल पिज्जास एट 44, टू मीडियम पिज्जास 66 एंड टू लार्ज पिज्जास एट 99 रियाज. पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा. स्माइल पार्टनर नसीम डेंटल सेंटर. हर स्माइल हो परफेक्ट सिर्फ नसीम डेंटल के साथ. विजिट करें मुंतजा या अजीजिया, योर ट्रस्टेड स्माइल पार्टनर. Adventure Park Partner Jungle Zone. Double the fun, half the price at Jungle Zone Hyatt Plaza. Enjoy 50% off on your favorite rides and games every day until 4 p.m. Don't miss out. Restaurant Partner Chaskar.

0: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

एक ही तो दिल है कतर, कितनी बार जीतोगे। मस्त मौला गौरव आपके साथ है। और जब मैं ये सब सुनता हूँ तो मुझे लगता है वाकई में यार ये तो दिल जीत लेने वाली बात है। अब देखिए कतर में हमारे खाने पीने का कितना ख्याल रखा जाता है कि हम इधर उधर कहीं भी जाए कहीं भी खाएं, छोटा सा कैफेटेरिया हो या बढ़िया फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, सब में फूड सेफ्टी मेंटेन रहे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2026 के सेकेंड हाफ में यानी कि पिछले 3 महीनों में सबकी हेल्थ और खाने की सेफ्टी के लिए एक जबरदस्त टाइट इंस्पेक्शन ड्राइव चलाया था। और इस दौरान नंबर तो सुनिए 136,000 से भी ज्यादा, 1,36,000 से भी ज्यादा फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज में MOPH के टेस्टिंग की गई। और इतने ही नहीं, कतर के पोर्ट्स पर आने वाले 29,000 से भी ज्यादा इंपोर्टेड फूड शिपमेंट्स की भी चेकिंग हुई और लोकल लेवल पर हजारों इंस्पेक्शन विजिट मारी गई कि कोई रेस्टोरेंट अनहाइजीनिक तरीके से तो खाना नहीं बना रहा है, ताकि हम तक सिर्फ ए ग्रेड क्वालिटी का खाना पहुंचे और हमारी सेहत मेंटेन रहे। और इतने नहीं, डिजिटल फ्रंट पर भी वथिक सिस्टम के जरिए ना हजारों फूड आइटम्स को अप्रूव किया गया है, ताकि स्मूथ बिजनेस के साथ साथ टॉप क्लास सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे। और ये सब कुछ 360 डिग्री से देखते हुए MOPH के इस फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पिछला 3 महीना हमारी फूड सेफ्टी बनाए रखी, हाइजीन के साथ साथ कैसे हमें बेहतरीन क्वालिटी के फूड मिले इसका भी देखभाल किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कितनी बार दिल जीतोगे। और जब हम और आप अगली बार कहीं जाते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि पता नहीं यहाँ का खाना कैसा होगा। याद रखिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की चौकन्नी पैनी निगाहों के आगे कोई बदमाशी खाने पीने से कर नहीं सकता। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट। चलो भैया एक करा किसी बात पे हो जाए पकौड़ों के साथ। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पूजा भट्ट, हमने सुना है कि आपके समय में इतनी पार्टियां आपके टेरेस पे होती थी, किस्सा तो सुनाइए यार।
2: पर आई रिमेम्बर वन सच पार्टी जहां पे मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा आए थे और राहुल बोस मेरे दोस्त थे और वो पहली बार मेरे टेरेस पे मिले थे। तो आई रिमेम्बर आई थिंक 5:30-6 बजे तक मैं वापस आई थी एंड आई सॉ इन अ कॉर्नर मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा और राहुल बोस, तीन एक लाइन में, मतलब ऐसे तीनों सो गए, वन हेड ऑन द अदर पर्सन शोल्डर। सो वो मैंने देखा, मैंने बोला कि वाह क्या कवर बनता है ये।
1: मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा एंड राहुल बोस नीड टू डू अ फिल्म टुगेदर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: द मेंटेनेंस सुहानी शाह।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC supply.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
1: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हुआ है शाम के साथ और मस्त मौला गौरव के साथ आप बने हुए हैं दी शो शाम शानदार
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ट्रैफिक लाइट के साथ साथ गाड़ी के हेडलाइट के भी रूल होते हैं, जो हम जाने अनजाने में फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं किए तो 10,000 कतरी रियाल तक का फाइन है दोस्त।
2: #974
1: मस्त बोलो गौरव, आपको बताना चाहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर इशू कर दिया है, और ये इम्पोर्टेंट रिमाइंडर उन लोगों के लिए है जो न जाने अपनी गाड़ी की बिजली इतना क्यों बचा रहे, हेडलाइट क्यों नहीं जला रहे। यस, हम आपको बता दें, सनसेट से लेके सनराइज तक और इवन डे टाइम में अगर मौसम खराब है, विजिबिलिटी पुअर है, तो आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखनी है, रेयर लाइट्स ऑन होनी चाहिए। और हाँ, जब सामने से कोई गाड़ी आ रही तो हाई बीम पर चला के सामने वाले को ना ब्लाइंड मत करो, कोशिश करो लो बीम पे ही गाड़ी रहे, डिप्ड बीम पे। हाँ जी, पर कुछ लोग हैं जो ये रूल को तोड़ते हैं, ये बाइसाइकिल से लेकर मोटरसाइकिल और कार्स पर भी अप्लाई होता है, और कार पर तो होता ही होता है। सो गाइस, आई विल जस्ट से कि अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखिए, जब भी अंधेरा हो उसका ज्यादा ध्यान रखिए। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि आप इतना पैसा बचा क्यों रहे, करामा आपको इसका बिल थोड़े देता है, ये तो आपकी बैटरी के ऊपर है, और बैटरी 1-1.5 साल में खराब होती वो होती रहेगी। आप चाहे कितना ही बचा लो, ये छोटी बचत से आप अपनी जिंदगी को बड़े रिस्क में डाल रहे हो और अपने पॉकेट को भी। 10,000 कतरी रियाल आपके वहां कितना रुपया होता है याद रखो। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Pepermilchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Milchi, murga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
3: ओके चलिए।
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
5: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी?
4: दिमाग खा रखा है।
5: अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे।
4: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इजंट इट? 4 balls left, दे नीड 12 runs टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book your

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में बर्बाद हो सकती हो अगर आप थोड़े अलर्ट नहीं रहे तो।
1: मस्त मौला गौरव।
0: मेहनत की कमाई चंद क्लिक्स में हमने गवाई वाली सीन ना हो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कुछ याद दिलाया है।
2: #974
0: MOCI ने हमसे कहा है कि हम अपनी उंगलियों को थोड़ा काबू में रखें क्योंकि होता क्या है ना, अरे वाह 90% का डिस्काउंट ये प्रोडक्ट पे, अरे और इसे खरीद लेते हैं, और जैसे ही आप उस अननोन लिंक को क्लिक करते हैं शायद आप हैकर्स को अपना एक्सेस दे देते हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक सुपर इम्पोर्टेंट पब्लिक एडवाइजरी इशू की है साइबर थ्रेट्स और फिशिंग अटैक से बचने के लिए। होता क्या है आजकल के हैकर्स बहुत क्लेवर हैं भैया, इन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल जैसी दिखने वाली फेक वेबसाइट्स तक बना ली है। MOCI ने हमें वार्निंग दी है कि किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स, अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेज, सस्पिशियस एड या फिर ऐवे ही गूगल सर्च रिजल्ट वाले लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। यस प्लीज डोंट क्लिक, क्योंकि हमारी पर्सनल आईडी हमारे बैंक अकाउंट के OTPs का गेम बजा सकते हैं। तो अब आप समझदार हैं, इशारा काफी है, MOCI ने हमें आगाह कर दिया और बाकी हमारी मर्जी, क्योंकि अब सिर्फ कंट्रोल उधर कंट्रोल नहीं, फिंगर कंट्रोल बॉस, फिंगर कंट्रोल चाहिए। उंगलियों को थोड़ा कम घुमाइए, हर चीज जो डिस्काउंट या ऑफर में दिखती है वो कभी कभी पूरी मुसीबत का घर लेकर आ जाती है। 89.6 मिर्ची 1, अपनी अकल लगाओ, अपने आप को बहुत अलर्ट रखो। मिर्ची It's hot.

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट SCD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: यार मैंने जो कोलकाता देखा है ना, वो बड़ा सिटी ऑफ जॉय है। वहाँ पे लोग खाने पीने के शौकीन हैं, सुबह सवेरे ड्यूटी पे निकल जाते हैं, एंड हावड़ा से लेकर कोलकाता के कोने कोने तक किसी बाजार में जाइए, एक अलग ही मजा है। लेकिन जब ब्राउन सीरीज देखी तो एक अलग ही पहलू नजर आया। यस, मस्मोला गौरव आपके साथ है, एंड जी की उस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं जिसने पिछले दिनों मेरे दिमाग को तो झन्ना दिया था। करिश्मा कपूर मुझे आज से पहले ऐसी कभी नजर नहीं आई जैसी वो इस ब्राउन सीरीज में बनी है। एज रीटा ब्राउन कह सकते हैं शानदार अभिनय किया है, एंड सीरीज इतनी शानदार थी कि भाई एक दिन में निपटा डाली, क्योंकि डायरेक्टर अभिनव देओल ने इसे डायरेक्ट किया है। ये एक नॉवल से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है सिटी ऑफ डेथ, एंड मैं आपको बता दूं अभीक बरुआ की ये नॉवल सिटी ऑफ डेथ को एज अ बैकग्राउंड कोलकाता लेकर रीटा ब्राउन एक मर्डर मिस्ट्री पे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करती जाती है। हालांकि ये जिस तरह के इस रोल में नजर आई है, इनका ग्लैमर आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन एक ऐसी ऑफिसर जो शायद ड्यूटी से एकदम थक चुकी थी लेकिन फिर से एक्टिव होती है, और जब एक्टिव होती है तो फिर एक शानदार तरीके से वापस आती है। वेल, कुल मिलाकर इतना जरूर कहूंगा कि ट्रॉमा है, एडिक्शन है, ग्रीफ है, इसमें रिडेम्पशन है, एंड जब वो कोई वापस आने की सोचता है और जब पुलिस वाला आ जाता है कि अब कुछ करके दिखाना है तो कर देता है। बट मेरे लिए शॉकर था जब मुझे ये पता लगा कि जब करिश्मा कपूर को पहली बार ये सीरीज ऑफर की तो उन्होंने मना किया था
1: कि मैं ये शो नहीं कर रही कि मुझे कोलकाता नहीं जाना है, मुझे 50-60 दिन के लिए ट्रैवल नहीं करना है, तो बाय बाय। हाय जी गैंग, जी स्टूडियोज, लवली टू मीट यू, बट थैंक यू, बट नो थैंक यू। देन ऑब्वियसली आई मेट अभिनय एंड देन हियर आई एम, क्योंकि द रोल वॉज सो डिफरेंट, एंड नॉट जस्ट डिफरेंट इन द रेगुलर वे डिफरेंट, इट वॉज जेन्युइनली एक्सट्रीमली अनयूजुअल एंड रॉ and something of course that I had not done before. हाँ तो बोलना ही था।
0: और हाँ बोल के आपने बहुत ही शानदार काम किया, क्योंकि हम एज एन रीटा ब्राउन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर अगर अभी तक आपने देखी है तो Z5 का सब्सक्रिप्शन लेकर इस वेब सीरीज को जरूर देखो। एंड अगर ब्राउन देखने के बाद मन थोड़ा दुखी दुखी सा हो जाए तो फिर है जवानी तो इश्क होना है, यस ये भी आपको मिल रही है Z5 पर, जहां पर मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, वरुण धवन बने हैं एकदम शानदार किरदार में नजर आएंगे, एंड इतना हंसाएंगे कि पूछिए मत। वेल मुझे बस इतना ही कहना है कि वरुण धवन जब भी कुछ करते हैं ना यार, वो हमें गोविंदा के दौर की याद दिलाई देते। 89.6 BGY, it's hot.

0: रियार साहब गड्डियां ऊंचिया रखी है, लेकिन मैं कहता हूँ इस लड़की ने उससे भी ऊंचा दिमाग रखा है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: यस, फर्स्ट क्लास में यानी कि क्लास वन में जब थी तब स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि पैशन था, मैजिक सीखना है, कुछ अलग करना है, एंड होम स्कूलिंग शुरू कर दी। लेकिन पैशन इतना बड़ा था कि आज पूरी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड मेंटलिस्ट है। नाम है सुहानी शाह, अपने कतर में पहली बार आ रही है। यस, कतर कैलेंडर द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्रेजेंटेड बाय आईपे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन पापा जोन्स, रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, एंड हेल्थ पार्टनर किम्स हेल्थ, एंड साथ ही साथ रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, शॉपिंग पार्टनर डाइसो जापान, होम जारस, ये सब के सब एक साथ आए हैं ताकि हम आपको एक ऐसी खूबसूरत शाम दे पाए जो कतर ने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इवनिंग जहां पर सुहानी शाह हम सबके दिमाग को घुमा कर रख देंगी। प्रोडक्शन पार्टनर सिंफनी, हमारे इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, एडवर्टाइजिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, साथ ही साथ हमारे मार्केटिंग पार्टनर क्यू स्क्वाड, ये सब के सब एक साथ आए हैं ताकि एक खूबसूरत शाम बना पाएं एंड एक्सपीरियंस ऐसा दें जो सदियों तक याद रहे, ऐसा कहेंगे। हाँ जी, क्योंकि सुहानी जब शॉक करती हैं तो रॉक करती हैं। आई एम श्योर आपने अभी तक अगर अपनी टिकट्स बुक नहीं की है तो एसटीटी हमारे टिकटिंग पार्टनर सुनू पर जाकर एसटीटी पर बुक कर लो, क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर में अभी ये टिकट आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं। इसी उम्मीद में कि टिकट बुक करेंगे, एक साथ सब मिलेंगे एंड सुहानी को कतर में बेहतरीन फील कराएंगे, क्योंकि सुहानी अकेले नहीं आ रही है, इनके साथ एंटरटेनमेंट का असली तड़का लगाने चरण एंड यस सिंगर चरण एंड आशी आ रहे हैं, जो कि डांस एंड सिंगिंग डुओ है, कमाल कर देंगे। बस उसके लिए इंतजार कीजिए, 25 सितंबर की शाम के लिए अपना टिकट बुक कर लीजिए। मिर्ची इट्स हॉट, अब तक हबीबी मा सलामा।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: विक्रांत, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर क्या आपके लिए चुटकियों का खेल है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है?
2: नहीं यार, मेहनत तो है, मेहनत तो है एंड आई लव इट, आई लव एक्टिंग एंड मजा आता है अलग अलग पार्ट्स प्ले करने।
1: किसी दिन वरदाना आके पूछे पापा एक्टिंग या मैं?
2: ये क्या सवाल है?
3: पापा बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं।
4: ये थे विक्रांत मैसी और मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडा, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरा बॉस एआई पे ज्ञान देता रहता है और मुझे डांटता रहता है कि मुझे एआई से रिप्लेस कर देगा, क्या करूं?
1: अरे तू सिंपल है ना, उसको बोल तुझे रिप्लेस कर देगा तो डांटेगा किसे, एआई को।
2: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: अब बज चुके हैं रात के 8. पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: Ghana Indie Top 10.
4: Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap. Ab baari hai hafte ke hottest pop countdown ki. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Ye wo show hai jahan hafte ke top 10 hottest pop gaane hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest gaano mein do nayi entries hain. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. Some special shout outs aapke favorite artist se baatein, all this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki gaana number 10 ke saath. Gaane ka naam hai Move Body, Zara Khan Scales ka gaana. 4 hafton se hai ye barqarar. Pichle hafte se 3 position niche drop होके Move Body is this week on Gaana number 10. उसके बाद हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन. 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड अ कैसेट क्लासिक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.
5: नंबर 10.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड इस सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी. मेरा हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है. सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान. मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है. पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम. चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना, अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है. नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना. उसमें उनके साथ हैं दीदार कौर, एंड दोनों का पहला कोलैबोरेशन है. उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाख के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दीदार कौर एंड शान की आवाज में गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री. इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. Nafis wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: Hello.
5: Hello, Mr. Vipul. मैं से बोल रहा हूँ. आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स. तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
4: इनबॉक्स चाहिए. इनबॉक्स कैसा मतलब?
5: मैं आपको वही समझा रहा हूँ. एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना. तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा. अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे. तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ. ठीक है सर?
4: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब.
5: हाँ बताइए.
4: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना.
5: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए.
4: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
5: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं.
4: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना. अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
5: बिल्कुल,
4: से कम मुझे
5: बिल्कुल
4: मालूम
5: से, बिल्कुल सही कह रहे हैं.
4: जा कहाँ रहा है?
5: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यही रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है. और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए. अब उसमें आपको टेंशन क्या है? हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से.
4: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
5: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें.
4: यार क्या बात कर रहा हूँ, मतलब
5: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है. क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए. मेरी बात सुनिए.
4: चल
5: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था, सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है. रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा. यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है.
4: बिल्कुल
5: क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप पूरी. हेलो
4: हेलो
5: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार. इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार.
4: आपको से फोन मत करो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया.
5: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी. मैं आपसे सिर्फ एक बात. विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा. तुम रेडियो मिर्ची पे हो.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: संजू राठौर की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 गानिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कानिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। संजू राठौड़ की आवाज ऐसी है, सुनते ही पता चल जाता है इट्स हिज सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई शान कैन दीदार कौर की आवाज में। हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम। चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक, वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, दे गॉट दैट स्टिकीनेस फैक्टर। आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, दैट इज आर 90s एंड 2000s का आइकॉनिक पिक, उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। @RJKanika पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है।

0: एड आरजे करेंगे और इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आवाज है रेखा भारद्वाज की। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो उन्हीं का गाना है। शायद आप गाना पहली बार सुने लेकिन सुनकर लगेगा कि इस गाने को तो आप बरसों से जानते हैं। दैट मैजिक इज रेखा भारद्वाज। ये गाना मुसाफिर कैफे नाम की सीरीज का है, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है, कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी, यंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके बारे में है, लेकिन प्यार को डेफिनेशन दे दिया रेखा भारद्वाज की आवाज, क्योंकि रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, बट रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है दरमिया, इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
3: Number 4.

0: अनीशा का हृदय की आवाज में गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Follow karna bilkul free hai. Handle is at RJ Kanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Independent music basically ek artist ko wo mauka deta hai ki tum jo feel karte ho, jo mehsoos karte ho, jo kahani batana chahte ho, apne music ke zariye wo batao. एंड स्पेस में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रूली म्यूजिक में मीनिंग ढूंढा है, एंड वन ऑफ दोज आर्टिस्ट इज इंडियन ओशन, लेजेंडरी आइकॉनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। व्हाट अ बैंड, आई स्वेयर हर किसी को इंडियन ओशन का लाइव शो देखना चाहिए, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। दे ट्रूली डिफाइन द इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज वो कल्चरल पे कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियंस देने से कतराते नहीं है। उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। आज हम इंडियन ओशन के ही एक गाने को स्पॉटलाइट देने वाले हैं। ये ऐसा गाना है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, वी आर वेरी क्विक टू जज। नाम से कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं कि ये इस तरफ का है, वो उस तरफ का है, ये अपना है, वो पराया है। एंड एक बार हमने ये करना शुरू कर दिया ना बॉस, हमको सिर्फ वही दिखता है। और ये गाना जो है वहीं पे हमारी नब्स पकड़ लेता है कि ये क्या लगा रखा है उस नाम के पीछे, उस लेवल के नीचे। सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जैसा ही है। That's the beauty of Indian Ocean. उनके गाने आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उनके गाने सवाल भी उठाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। That's why their voice matters and they are truly one of those artists जो म्यूजिक एंड मीनिंग को साथ में लेके चलते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रुक जा रे बंदे। तो थोड़ा रुक कर इस गाने को सुनो, इंडियन ओशन का रुक जा रे बंदे ऑन आर स्पॉटलाइट दिस वीक। बंदी का नाम है RJ Kanika। Enjoy.

इस गाने में ना वो बात है कि आसपास का सारा शोर एकदम के लिए रुक जाता है और आप इस गाने को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन ओशन द बैंड का दैट वॉज बंदे ऑन आर स्पेशल स्पॉटलाइट दिस वीक। @RJKanika और इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है मुझे उस गाने के बारे में बताओ, एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। नूर खान मधुर एक्सो का आरजू इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उसके बाद मिट्टा रॉयर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा इज ऑन गाना नंबर 2। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: की टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नंदीश संधू टीवी एक्टर, बालों में क्या लगाते हैं ये बता के चले जाइए। इतने सुंदर बाल तो हो ही नहीं सकते।
4: आपकी आंखें वैसे बहुत सुंदर हैं।
3: मैं अपनी आंखों में कुछ नहीं लगाती सिवाय जुनून के।
4: सिवाय सिवाय किसी जुनून के।
3: अगर ये अपार शक्ति खुराना और नंदीश संधू और सिद्धांत गुप्ता के बीच के ओ आ में आप सुन नहीं पाए, मैंने कहा मैं अपनी आंखों में जुनून के अलावा कुछ नहीं लगाती। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: इट्स ऑल डाउन टू धोनी इज़न्ट इट। 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live

0: call.
1: हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज गाने का नाम है तन्हा दिल इन द वॉइस ऑफ वन एंड ओनली शान. इट्स ट्रू दैट ये गाना एक पूरी जेनरेशन का एंथम था. साल 2000 मिलेनियम नया नया शुरू हुआ था, नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी, नए कॉलेजेस आ रहे थे एंड पहली बार बहुत सारे नौजवान अपने घर छोड़ के निकल रहे थे, कोई नए कॉलेज के लिए, नए शहर के लिए, पहली नौकरी, नया फोन जिस पे STD के पैसे बचाने के लिए मिस कॉल दिए जाते थे. उस पूरे दौर का जो दिल था ना वो कहीं ना कहीं इस गाने में है, तन्हा दिल. क्योंकि ये तन्हाई किसी ब्रेकअप वाली तन्हाई के बारे में नहीं है, ये घर से दूर एक नए शहर में कमरे में कोई अकेला बैठा है, घर की याद, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो बचपन का दोस्त जो सब पीछे छूट गया. पर दिस सॉन्ग कैप्चर्स अ यूनिवर्सल फीलिंग, राइट? तन्हा दिल तन्हा सफर. ना यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम था, लेकिन ये गाना और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अडेप्ट हुआ था एंड आज 2026 में भी ये फीलिंग इतनी रेलिवेंट है, बिकॉज कोई ना कोई आज भी अपना घर छोड़ के एक नए शहर में है, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा है, मे बी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बस कैसेट की जगह हाथ में फोन है, बट फीलिंग तो वही वाली है. और शान की आवाज में दिस सॉन्ग कैप्चर्स इट ऑल, तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कैसेट क्लासिक में दिस वीक राम संपत की कॉम्पोजिशन, शान की आवाज, तन्हा दिल इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक. बंदी का नाम है RJ कनेका. एंजॉय.

शान की आवाज, राम संपत की कॉम्पोजिशन, दैट वॉज तन्हा दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। गाना भले पुराना हो, फीलिंग वही है, चाहे आप घर से दूर हो या ना हो, ये गाना सबके लिए है। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी 90s एंड 2000s का वो पॉप सॉन्ग जो आज भी आपको बहुत पसंद है, हमारे साथ शेयर करो। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अशकाय, हम दोनों आपके कैसेट क्लासिक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, which is the numero uno song of the week, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर एक, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। दिस हरियाणवी पॉप सॉन्ग इज येट अगेन ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 1।

0: Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Hi there, what's up? Tell me.
1: Sir, मैं notice period पे हूँ और हाथ में दूसरी job भी नहीं है. क्या करूँ?
2: Well, ये बात तुझे पहले notice करनी चाहिए थी, Senorita. अब same job ना मिलेगी दोबारा.

मोहिनी मोहिनी मोहिनी, पूरा एयरपोर्ट बस इसी आवाज से गूंज उठा था। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। तो देखो, मुझे बताया कि पूरे दिन की थकावट अगर तुम्हें मिटानी है ना, तो बस यहाँ पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है दीज एवरग्रीन रेट्रो सॉन्ग्स, और ऑफ कोर्स इन गानों के पीछे की कहानियां, उस रेट्रो जमाने की फिल्मों के पीछे की कहानियां। तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। आज जब मैं ये कह रही हूँ मोहिनी मोहिनी, तो बताओ कौन सी फिल्म पे एकदम रिसर्च करके आई है श्रेया। फुल होमवर्क, एब्सोल्युटली करेक्टली एप्टली डन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कुछ गानों के उस पर जब मैं मिलूंगी तब बताती हूँ, तब तक सोचते रहो, फिर से रिपीट करती हूँ मोहिनी मोहिनी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live.

मोहिनी मोहिनी एक ऐसी फिल्म जिसके पहले माधुरी दीक्षित ने भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगी आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जैसे ही मैं मोहिनी मोहिनी कहती हूँ तो ऑफकोर्स आपको याद आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल आज बात करेंगे फिल्म तेजाब की। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित वाज कास्ट ऑपोजिट अनिल कपूर। इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स थे, चंकी पांडे थे, किरण कुमार थे, सुरेश ओबेरॉय थे, ऑफकोर्स अन्नू कपूर प्लेड अ वाइटल रोल, और माधुरी दीक्षित ने तब तक कुछ खास कदम नहीं जमाए थे और उनको लगा था कि वो इतने सारे स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं खो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन दो द रोल वॉज इन दैट ग्रेट दैट शी गॉट, लेकिन द सॉन्ग दैट शी गॉट वॉज 1 2 3। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कहते हैं कि जिस कंपनी ने कैसेट्स रिलीज किए थे, द ऑडियो कैसेट्स, उस समय यू नो कैसेट्स ही चला करते थे, तो उस कंपनी को बार बार लॉट में नए कैसेट्स का बैच रिलीज करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, बिकॉज खत्म होते जा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, सो तेजाब का ये वाला गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: क्या कहा?

अच्छा, किस किस को शाहरुख खान का मन्नत अंदर से देखना है? देखना है तो चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है तेजाब। 1988 की ये फिल्म थी। उसके बाद ना जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1990 तक आते आते माधुरी दीक्षित बिकेम द नंबर वन हीरोइन ऑफ इंडिया। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मन्नत की बात कर रहे थे हम। देखना है तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि शायद जब ये फिल्म बनी तो आपको नहीं पता होगा। इस फिल्म में अनुपम खेर का जो बंगलो दिखाया गया है और उसके शॉट लिए गए हैं, वो बंगलो अंदर से भी दिखाया गया है, बाहर से भी दिखाया गया है, वो है शाहरुख खान का मन्नत। आई एम श्योर अब इतने साल हो गए, उसमें बहुत सारा रेनोवेशन हो गया होगा, बट यही वो बंगलो है जो कि शाहरुख खान ने खरीदा था। यस, सो इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, आपको तेजाब फिर से देखनी पड़ेगी। अनुपम खेर वाला घर आपको अब पता है ना कि शाहरुख खान का मन्नत है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ।
2: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

0: आजकल जिसे देखो इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे रील बनानी भी नहीं आती, मैं क्या करूँ?
1: तो तू एक काम कर, मैंने रील डाला है, तू फटाफट लाइक कमेंट और शेयर तो कर दे।

वेटर इतना घबरा गया था कि उसने एम्बुलेंस बुलाई, और मैनेजर इतना घबरा गया था होटल का कि उसने तो सीधे पुलिस बुला ली थी। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टुडे तेजाब। अब हुआ ये कि गाना है ना सो गया ये जहां, इस गाने से पहले राइट बिफोर द सॉन्ग देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस दैट वाज शॉट। अब ये फाइट सीक्वेंस शूट हो गया, लेकिन भाई एक्टर्स ये भूल गए, जैसे कि चंकी पांडे, अनिल कपूर एंड ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने ना मेकअप नहीं उतारा। रात का समय था, ये गाना शूट हो रहा था, गाड़ी में उन्हें इतनी भूख लगी कि पास के एक होटल में चले गए। होटल वाले देख करके घबरा गए कि ये क्या खून से लदे पदे एकदम

खून ही खून हर जगह दिख रहा है, ये लोग कौन आए हैं। तो जो वेटर था वो इतना घबराया, उसने एम्बुलेंस बुला ली कि भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो मैनेजर था उसने तो पुलिस को बुला लिया कि हाँ कोई ऐसा वैसा केस तो नहीं है। बाद में उनको बताया गया कि अरे भाई हमने मेकअप रिमूव नहीं किया है, हम सीधे सेट से आ रहे हैं। अब इस गाने की बात हुई है तो ये गाना थोड़ी देर में सुनाती हूँ, मजा आता है मुझे आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। कम राइट बैक, दिस इज श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाड़िया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिम्पल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिंपल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिंपल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया है तो मैं क्यों वापस करूँ। ये कॉन्ट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिंपल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिंपल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए और अगले दिन टीनू आनंद ने दो फिल्में अनाउंस भी करी। ये जो दो फिल्में थी उनका नाम था महाकाल और एक का नाम था आलीशान, पर ये दोनों फिल्में कभी बनी नहीं। इसीलिए डिंपल ऑलवेज फेल्ट कि टीनू आनंद ने चीटिंग की, जो कि एक्चुअली में की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: तीन शहर और 17 दिन एक गाने को शूट करने में लग गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म तेजाब। वेल, इस फिल्म का सारा होमवर्क करके लाई हूँ मैं, और जब मैं रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे पता चला कि ये वाला गाना, ये जो आप सुन रहे हो ना, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ बाय नितिन मुकेश, क्या हमिंग है। वेल, ये गाना जो अलका याग्निक के साथ उन्होंने गाया, इस गाने को क्योंकि पूरा रात में शूट किया जा रहा था, हाँ, कि टीम बैठी हुई, एज इन द एक्टर्स बैठे हुए हैं गाड़ी में, और वो रातों रात एक गाड़ी में बैठ करके रास्ता कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को क्रॉस किया था और 17 रातें लगी थी टू शूट दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
1: सो गया है रास्ता।
0: आई नो, मुझे पता है कि आपको ये गाना पूरा सुनना, तो ये लो पूरा, कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस बार कम।

吃一口。

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: कॉल सेंटर वालों से कंटाल गया हूँ, पूरे दिन लोन के लिए इतने कॉल आते हैं, क्या करूँ।
2: अरे तो सिंपल है ना, लोन भर दे, फिर फोन ही नहीं आएगा।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर। कम राइट बैक।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 89.6 मिर्ची।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। कभी हमने नहीं

हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: अच्छा, कभी कभी ना फिल्म इतनी एंग्रॉसिंग होती है, इतनी एंगेजिंग होती है कि समटाइम्स ना लोग बहुत ऑब्वियस से सवाल भी नहीं पूछते। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज तेजाब फिल्म की बात हो रही है। तो क्या हुआ, अगर आप तेजाब देखोगे ना तो ब्रेक के पहले तक बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें नाना पाटेकर का सीन है, एज इन नाना पाटेकर ने शॉट किए हैं वो सीन्स, आपको दिखेंगे कुछ एकदम वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। लेकिन ब्रेक के बाद सडनली नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही गायब हो जाता है। लेकिन फिल्म इतनी इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी, बॉलीवुड का सारा तड़का उसमें लगा हुआ था कि लोगों ने ये सवाल किया ही नहीं कि अरे भाई नाना पाटेकर का हुआ क्या। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू के लिए क्या करना पड़ेगा
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ।
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
1: हूं। ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कहते एक बार कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अनिल कपूर की तेजाब मूवी को लेकर के। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ 50 वीक्स तक, 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया था इस फिल्म तेजाब ने। अब हुआ क्या, तेजाब जब बन रही थी अनिल कपूर के पास डेट्स ही नहीं थी, ही वॉज बुक फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो फिल्म की कहानी थी ना, ये कहानी एन चंदर ने बोनी कपूर को सुना दी। बोनी कपूर जो कि अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, अपने भाई के लिए अच्छी फिल्में देख रहे थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये फिल्म तगड़ी होने वाली है। सो उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि भाई ये फिल्म कर लो, लेकिन अनिल कपूर ने कहा मेरे पास डेट्स ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। सो देन बोनी कपूर स्टेप्ड इन एंड ही टोल्ड डायरेक्टर एन चंदर कि एक काम करना, जिस भी दिन अनिल की कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी वो दिन तेजाब का होगा। सो ऐसे करते करते अनिल कपूर के कई सारे शूट जो कैंसिल होते थे, अनिल कपूर चले जाते थे तेजाब के सेट पर। एंड दिस वॉज हाउ तेजाब वॉज मेड। इमेजिन, इतनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म वो एक्चुअली में अनिल कपूर की, क्या बोलूं मैं, वो कैंसिल डेट्स पे बनी थी। कभी कभी हमें नहीं पता होता ना कि हम किसी चीज के लिए जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं वो काम करेगी, या फिर जिसको बहुत कैजुअली ले लिया वो काम करेगी। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: वेकेशन ओवर हुआ है अब जाना होगा स्कूल. लेट मॉर्निंग उठने का बंद होगा रूल. बैग्स ऑन योर शोल्डर्स एनर्जी रखना फुल.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अनु कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अनु कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अनु कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज्ड कि ओहो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना। गानों के उस पार फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
4: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं ऐसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मतलब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
3: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
6: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
7: भाई, एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं, बल्कि कम कर दी।
8: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार, इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
9: 89.6, 89.6,
2: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी रेंज पे श्रेया है आपके साथ, जाने का टाइम हो गया है, तो गड्डी में बैठो, लेट्स हिट द हाईवे। अच्छा, आज का मेरा हाईवे हिट उन पे है जिनकी लाइफ में वो ड्रीम गर्ल आ चुकी है। आई वो ड्रीम गर्ल जो किसी शायर की गजल होती है, झील क्या कमल होती है,
1: दिल में मोहब्बत है।
0: अगर ऐसी ड्रीम गर्ल है तुम्हारे पास तो उसे जरा करीब रखो, समझे, थोड़ी बहुत उसकी बात मान लिया करो यार। On that note, this is Shreya signing off. I will see you tomorrow. Khayal rakho apna. Good night.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

89.6 Mirchi 1. It's hot.